0: गलत बात ना कहें। किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड भाग 122।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू।

0: हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन 3 देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल

0: जैसी घटनाएं हो सकती हैं, आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमरीका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली PV सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, PV सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है।

0: Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हममनसब माई सांदू से वफद की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमरीका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुज से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस व मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल, इनकम टैक्स के तरमीमी बिल, बहुत छोटे और औसत दर्जे के कारोबार को तरक्की देने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किए जाने की भी उम्मीद है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: मानसून इजलास के मौके पर हुकूमत ने कल पार्लियामेंट हाउस में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से खिताब करते हुए सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो पार्लियामेंट का कामकाज खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं और बुनियादी मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल लोकसभा की मुशावरती कमेटी के कामकाज से मुतालिक एक मीटिंग की सदारत की। इसी दौरान सरकार और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले अरकान ने इस इजलास के दौरान कानून साजी और दीगर मुजवजा कामकाज के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब बिरला ने तामीरी बहस मुबाहिसे, बामाना शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी अख्तार का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर जो आज से शुरू हो रहा है, नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मस्कूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर को छोड़कर बाकी इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हमबनसब माया सांदू के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। اس کے علاوہ وہ ایک تجارتی فورم سے خطاب کریں گی اور بھارتی برادری کے ارکان سے بات چیت کریں گی۔

0: किसी भारतीय सदर का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश काबीना ने जगदीशपुर में, जो भोपाल के नजदीक एक तारीखी कस्बा है, एक खसूसी मीटिंग के दौरान यकसा सिविल कोड यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश ने यकसा सिविल कोड यूसीसी पर अमल दरामद के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। कल भोपाल के जिले जगदीशपुर में काबीना की एक मीटिंग मुनाकिब की गई, जिसकी सदारत वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने की। इस मीटिंग में यूसीसी बिल 2026 के मसौदे को इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी गई। अब इस बिल को रियासती असेंबली के मानसून इजलास में पेश किया जाएगा। ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। काबीना मीटिंग के बाद वजीर आला यादव ने नामा निगारों को बताया कि यूसीसी से रियासत में इस यकसा सिविल कोड से रियासत के हर शख्स को बराबर की हैसियत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में कई शादियों की इजाजत नहीं होगी। यकसा सिविल कोड के मुताबिक जो लोग लिव इन ताल्लुकात में रहेंगे, उन्हें एक महीने के अंदर अंदर इंदराज कराना होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन गांव की सतह पर भी लाजमी होगा। अलबत्ता कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरे कार से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में कल बारिश की वजह से अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से 11 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। राहत और बचाव टीमों ने सैकड़ों अफराद को बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि राहत से मुतालिक कार्रवाइयां जारी हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इस हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जम्मू और कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया कि मरकज की तरफ से हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: राजौरी और पुंछ जिलों के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की रात आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के साथ निजी और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनकता हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमा मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सुरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नजर कांगड़ा, चंबा और सुरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामानिगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, खोड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस।
0: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मोतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आपने मैत्रेयी मजूमदार का गायन सुना राग नटभैरव में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 9:15 और 4 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: استمعنا أيها السادة إلى هذه الموسيقى الهندية وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर

0: जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगैन टुडे व्हेन द लोकसभा मेट एट 11 AM। द हाउस पेड ट्रिब्यूट्स टू 6 ऑफ इट्स फॉर्मर मेंबर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली। द हाउस ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट्स टू फादर अमीर ऑफ कतर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। व्हेन द स्पीकर ट्राई टू टेक अप द क्वेश्चन आवर, द ऑपोजिशन मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी रेज द इश्यू ऑफ पेपर लीक ऑफ नीट एग्जामिनेशन। Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the house and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. During the proceedings, Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan adjourned the house till 12 noon. When the House met after the first adjournment at the noon, the opposition members continued their protests against NEET paper leak. The Rajya Sabha adjourned till 12:30 PM. Prime Minister Narendra Modi has said that be it the monsoon or the monsoon session, if both are proactive, they prove to be highly productive. Speaking to the media before beginning of the monsoon session of parliament, he said when both

नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ घर आंगन कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं आप। आपका स्वागत सत्कार करती हूं मैं, तो स्वीकारें मेरा यानी मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल के 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन रहे हैं आप। तो अब वक्त है हमारे सेगमेंट आज के प्रश्न का। तो आज आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी कि सेवा मित्र का अचानक से कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी, इसके बाद की कहानी आप सभी की अपनी अपनी ही होगी। तो देरी किस बात की, लिख भेजिए अपने किस्से अपने जज्बात हमारे पास। हमारा मेल है fmgoldga@gmail.com। अचानक काम वाली के ना आने की खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होती है, है ना। और हम सब के जीवन की आप बीती में ये बात कभी न कभी शुमार भी जरूर होती है ना दोस्तों। तो घर को घर बनाए रखना और कोई छोटा काम उसे समझना, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। घर को घर बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम सभी जानते हैं। घर चलाना भी एक कला है और हम महिलाएं किसी भी इमरजेंसी से निपट सकती हैं। तो फिर इसके अनुभव आप सबके भी होंगे बहुतेरे। लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और इसी बात के साथ ये सुविचार आज का कि वक्त पड़ने पर ही किसी की कीमत जान पड़ती है, तो हंसते मुस्कुराते हुए अपने सेवा मित्रों के श्रम और सम्मान दोनों का ख्याल है जरूरी।

इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म से। और दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में, जिसमें हमने आज आपके लिए प्रश्न दिया है कि आपको बताना है अचानक से आपकी हाउस हेल्प या सेवा मित्र का ये कहना कि आज वो नहीं आ पाएगी। इससे जुड़े रोचक अनुभव आप सभी के अपने अपने होंगे, जिसे आपको बताना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। और देखिए, समय और जीवन हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता है, और आज का जो दिन है वो इतिहास की दो घटनाओं का साक्षी है। तो इस ऐतिहासिक घटना का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ दोस्तों, जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि आज 20 जुलाई है। ये दिन हम मनुष्यों की तार्किक और रणनीतिक बुद्धि को और उसके कौशल को बढ़ाने वाले खेल शतरंज को समर्पित है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में क्षय और मात के इस खेल को चतुरंग चतुरंजी के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अब चेस के नाम से भी हम पुकारते हैं और जानते हैं। तो 20 जुलाई यानी आज ही के दिन पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना से इस खेल को पूरे विश्व में पहचान मिली थी। और 1959 में अपोलो 11 मिशन के जरिए मानव ने पहली बार, जानते हैं, आज ही के दिन चंद्रमा पे कदम रखा। और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में घोषित किया। हर साल एक थीम के साथ इस दिन को मनाते हैं हम, और इस साल की थीम है दोस्तों, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। दोस्तों, ये दिवस हमें सीख दे जाते हैं कि जीवन में हर काम धैर्य के साथ और संयम के साथ सोच समझकर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपने सपनों को इतना उन्मुक्त बनाना चाहिए कि चांद की सीमाएं भी छोटी हो जाएं।

और दोस्तों आप हमारे साथ हैं 100.1 MHz पर घर आंगन आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं आज की प्रश्नावली। तो आज की जो प्रश्न प्रश्न है आपके लिए वो है, आपको ये बताना है कि आपके सेवा मित्र का अचानक से ये कह देना कि वो आज नहीं आ पाएगी, इससे जुड़े रोचक अनुभव आपके जीवन में जरूर होंगे। क्योंकि देखिए, घर एक ऐसा मसला है जो हम सभी की जिंदगी में उसे संभालना सबसे बड़ी खूबी होती है, और घर को संभालना, घर की नियमितताओं में चलना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। बाहर की सारे चीजों को एक साथ संतुलित रखते हुए घर को संभालना अपने आप में वो खूबी है जिसमें हमारे सेवा मित्र जो हैं वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो हम सभी की जिंदगी में ऐसा दौर जरूर आता है कि कभी ऐसी स्थिति उनके साथ बने जब वो ना आ पाए और हमें अचानक से पता चले, तो फिर उस में हमें सारा काम फटाफट करना होता है क्योंकि हमें अपनी बाकी दिनचर्या को भी पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों आगे भी बात करते रहेंगे आपके इन अनुभवों के लिए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं fmgoldga@gmail.com पर। और अब बात करते हैं उनकी जिनसे मिलकर आप खुश होते हो, नहीं जो आपसे मिलकर खुश होते हैं। तो साथियों, हमारी दुनिया का जो विस्तार है ना, हमारी जो टेक्नोलॉजी की देन है, उसके कारण और बढ़ गया है। तो कभी आपने गौर किया है हमारे फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, इनमें कितनों का चेहरा हम खुश होते हुए देख पाते हैं और कितने ऐसे हैं जो हमें देखकर मुस्कुरा उठते हैं। भाई, अपनी जिंदगी में उन लोगों के लिए तो हम समय निकाल ही लेते हैं दोस्तों जो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जिन्हें हम अच्छे लगते हैं, जो हमें देखकर सचमुच खुश हो जाते हैं, उनके बारे में क्या? तो आप बताइए, सोचिए सोचिए जरा इस बारे में। भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है दोस्तों। यानी भीड़ बढ़ रही है लेकिन साथ सभी का कम हो रहा है। ऐसे में हमारी जरूरत से इतर कोई ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना, जिसे हमारी कॉल का इंतजार रहता हो। कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, दादा नानी, या शायद कोई पुराना दोस्त जिसकी फ्रेंड लिस्ट ज्यादा बड़ी ना हो। इसीलिए हमारी मौजूदगी जिनकी खुशी है, उन्हें अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त देना ही असली उपहार होता है। क्योंकि महंगे तोहफे समय के साथ पुराने हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा याद रहता है।

जी हाँ, रात और दिन इस फिल्म से आप लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को सुन रहे थे। और देखिए, दिल की गिरहें खोलने का समय है, क्योंकि आपके लिए हमारा प्रश्न तैयार है। आपको बताना है कि हाउस हेल्प यानी सेवा मित्र का अचानक आपके लिए ये कह देना फोन करके कि वो आज नहीं आ पाएगी, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आपके क्या जज्बात होते हैं, क्या बीतती है आप पे, ये सब कुछ जानने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए घर आंगन, आपका अपना ये कार्यक्रम 100.1 पर। दोस्तों, हम सभी फोन के आदी हैं, है ना, और स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेस के प्रयोग से आज हमारी जो पीढ़ी है वो सचमुच स्मार्ट होती जा रही है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? भाई देखिए, इनके बगैर तो कोई काम नहीं होता, है ना, क्योंकि स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन उसका अगर स्मार्ट तरीके से हम प्रयोग करते हैं तभी वो पूरी तरह से स्मार्ट हो पाता है ना, क्योंकि वही तय करता है कि हमारी डिवाइस कितनी सुरक्षित और कितनी लंबी चलने वाली है। तो आज आपसे बात करते हुए आपको बता देते हैं कि स्मार्ट डिवाइस का स्मार्ट प्रयोग कैसे होते हैं। तो देखिए, लगभग 6 अरब लोग दुनिया में ऑनलाइन रहते हैं दोस्तों, ऐसे में सवाल फोन रखने का और उसके डिवाइस को किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए इसका होता है। तो स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट रहने के लिए, हमारे हेल्थ को भी स्मार्ट रखे, इसलिए बहुत सी बातों को जानना हमें चाहिए। और डॉक्टर्स बताते हैं कि हर समय स्क्रीन के सामने रहने वाले लोग हर 20 मिनट बाद यदि 20 सेकेंड के लिए लगभग 20 फीट दूर देखने का अभ्यास करें तो उनकी आंखों पे जो जोर पड़ता है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा। और अपने ऑनलाइन अकाउंट का मजबूत पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए दोस्तों, जिनमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जरूर शामिल करने चाहिए, और उनकी सुरक्षा के लिए समय समय पर उन्हें अपडेट

0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा।
1: सुनो तो, सुनो तो,

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई। इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए निश्चित रूप से आप सभी भी मुस्कुरा रहे होंगे दोस्तों। और ये गीत आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और साथियों हमने बात की थी स्मार्ट डिवाइस का स्मार्ट प्रयोग कैसे होना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात का हम सब भी बहुत ध्यान रखते होंगे, लेकिन बार बार याद दिलाने से ये हो जाता है कि हम उन बातों के लिए और ज़्यादा स्मार्टली प्रयोग करने के लिए ध्यान देने लगते हैं। और दोस्तों अब हम सुविधाओं की बात कर ही रहे हैं, तो सुविधाओं में हमें एक चीज़ और बहुत पसंद होती है कि हमें हर काम और हर चीज़ें करीने से मिलती रहें हर जगह, चाहे घर हो चाहे घर के बाहर। तो सुविधाओं से जुड़े अगर हम हैं तो सुविधाओं के साथ नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं नियमों की, लेकिन वो सुविधाएं तब असुविधा में बदल जाती हैं दोस्तों जब हम उन नियमों का पालन नहीं करते जिन सुविधाओं को हम भोगते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही बाहर अगर हम कूड़ा फेंक दें घर के बाहर, तो क्या हमारा घर सचमुच में साफ दिखेगा? नहीं ना। यानी कि जैसे हम घर को बहुत करीने से रखते हैं, वैसे ही बाहर की जो सड़क है यानी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना खुद की सफाई पर ध्यान हम देते हैं, उतना ही ध्यान अपने आसपास की सफाई पर रखने से हमारे आसपास का वातावरण भी सुंदर होता है, और यही कहलाता है हमारा सिविक सेंस। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता MOHUA ऐप डाउनलोड साइट करके भी आप गंदगी, कचरा और सफाई से जुड़ी शिकायत वहां पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी गंदगी दिखती है तो आप बता सकते हैं, और पहले तो कोशिश हो कि आपके माध्यम से ही वो साफ हो जाए आसपास की अगर जगह कचरा थोड़ा है कम है तो। और अपने मोबाइल में आप ना जब भी ऐसी स्थिति है जब आपको आप बहुत सिंसियर नागरिक हैं, बहुत अवेयर हैं अपने आसपास की स्वच्छता के लिए, तो मोबाइल में आपकी ये ऐप होना ही चाहिए। इसे लॉगिन करने के लिए आपको अपना फोटो लोकेशन अपलोड करना होगा, और जो भी अगर कहीं समस्या दिखती है तो उस नागरिक समस्या की तस्वीर आपको उस ऐप में भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। इस तरह आप एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिए आपको ऐप डाउनलोड करना है MOHUA। अगर आपके मोबाइल में अभी नहीं है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि आप स्वच्छता पसंद होंगे तो आगे भी आपका समाज सुंदर और स्वच्छ होगा। और सिविक सेंस सिर्फ सफाई नहीं बल्कि जानते हैं सड़कों पे जो लाल बत्ती होती है वहां पे भी काम करता है, क्योंकि वहां हमें अपने धैर्य को दिखाना होता है। सही लेन में रहना, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत और गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना, सार्वजनिक स्थानों को उतना ही अपना समझना जितना कि हम अपने घर को समझते हैं, अनुशासित रहना, ये तमाम छोटी छोटी बातें सभ्य समाज का हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि नागरिक सहभागिता किसी भी शहर की खूबी बन सकती है तब जब स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर के लिए सरकार के साथ हम भी जिम्मेदार बने। भाई अच्छी आदतों से सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारा परिवेश भी निखरता है, इसलिए सिविक सेंस संस्कारों से निभाए जाएं तो देश समृद्धि की ओर खुद ब खुद बढ़ता है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में जमीर फिल्म से इस खूबसूरत से गीत को सुनते हुए आप हमारे साथ पहुंच चुके हैं हमारे इस सफर में यहां तक दोस्तों, जहां हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रकृति की एक खूबसूरती की। क्योंकि अगर आप प्रकृति के निराले अंदाज को जीना देखना पसंद करते हैं तो आज आपको भारत के एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो पानी के ऊपर बसा है, जहां जमीन स्थिर नहीं बल्कि तैरती है। और वो जगह है दोस्तों मणिपुर की लोकटक झील का केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। और ये यहां पर ही ना एकमात्र संघाई हिरणों का आवास स्थल है। ये जो संघाई हिरण है ये बहुत दुर्लभ है, और यहां पर हॉक डियर, जंगली सुअर और उदबिलाव और लगभग 425 प्रजाति के वन्य पशु और बहुत सारी अलग अलग तरह की तैरने वाली मछलियां पाई जाती हैं। साथ ही जलीय वनस्पतियां और 100 से ज्यादा प्रवासी पक्षी भी यहां आते हैं दोस्तों। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बनाया गया था, जो 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की खासियत क्या है पता है? यहाँ की फुमदी घास

जो मिट्टी और सड़ी वनस्पति से बने तैरते हुए टापुओं को कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ना फुम्दी मिट्टी, पौधे और सड़े हुए जैविक पदार्थों से बनी मोटी स्पंजी मिट्टी की परत होती है, उसे ही यहाँ के स्थानीय लोग फुम्दी कहते हैं, जो पानी पर तैरती रहती है। और अकल्पनीय लगता है ना कि पानी के ऊपर तैरती घास, जमीन और उन पर चलते वन्य जीव, जानते हैं यहीं रहता है ये हिरण जिसके बारे में आपको बताया संघाई। और ये हिरण बहुत ही कम पाया जाता है पूरे विश्व में, जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्थान में मिलते हैं। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई ही है दोस्तों। और जब ये जमीन पर चलता है ना तो ये कहलाता है डांसिंग डियर। लेकिन जानते हैं ये एंडेंजर्ड श्रेणी में है। पूरी दुनिया में सिर्फ 200 से 250 संघाई ही बचे हैं। अगर आप मणिपुर के इस निराले द्वीप को देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का महीना यहाँ पे आने का सबसे बेहतरीन समय होता है। वैसे प्रकृति की इस रंग रंगीली कारीगरी को करीब से निहारना एक सुखद एहसास हो सकता है।

0: हरियाली और रास्ता, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। और दोस्तों, आज बात एक ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व की करने जा रही हूँ आपके साथ, जिनके बारे में सुनकर आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। और चूंकि ये हरियाली मित्र हैं, और ये सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि अपने आसपास यानी जहाँ रहते हैं उस वातावरण में, वहाँ के परिवार में भी अपने इन हरियाली मित्रों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहानी है राजस्थान से बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जयाणी की, जिन्हें हरियाली का सिपाही कहा जाता है। उन्हें वृक्षों से बहुत प्रेम है, और उनके इस प्रेम ने ही ये साबित कर दिखाया है कि एक छोटा सा बीज भी बड़े बदलाव ला सकता है। दोस्तों, फैमिलियन फॉरेस्ट्री यानी पारिवारिक वानिकी की अनूठी पहल प्रोफेसर श्याम सुंदर ने की। उन्होंने वृक्षों को परिवार के सदस्य की तरह अपनाने का सुंदर संदेश समाज को दिया। 2003 से शुरू उनकी एकल यात्रा में आज लाखों लोग उनके अभियान से जुड़े हुए हैं, और रेगिस्तान की धरती पर उन्होंने हरियाली की उम्मीद को उगाया है। और इस कवायद में सबसे दिलचस्प उनके अभियान में ये है कि उनके यहाँ वृक्ष केवल लगाए नहीं जाते बल्कि जन्म, विवाह और पारिवारिक उत्सवों में उनकी अहम भूमिका होती है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके प्रयास को वर्ष 2020 में सरकार ने सराहा और पद्मश्री से सम्मानित किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से उन्हें नवाजा। भाई, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटती हरियाली से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। तो पर्यावरणविद श्याम सुंदर जयाणी जी का प्रकृति प्रेम आज भी ये संदेश दे रहा है कि वृक्ष वो कविताएं हैं जिन्हें धरती आकाश पर लिख रही है, जी रही है और फैला रही है।
1: ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे।
3: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

साथियों, फूलों के साथ हंसते मुस्कुराते आपकी जिंदगी खिलखिलाती रहे, महकती रहे, इसी संदेश के साथ घर आंगन कार्यक्रम में आज दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को अनुमति। फिर मिलने के वादे के साथ यहीं छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

0: है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है, और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्यायसंगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. They were Nadendra Bhaskara Rao, Omvati Devi, Sudhanshu Seal, Major General Bhuvan Chandra Khanduri, retired, K.P. Dhanapalan and Pyarelal Sankwar. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When Lok Sabha Speaker Om Birla tried to take up the question hour, the opposition members, including from the Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. When the House met after the first adjournment at 12 noon, the opposition members continued their protest. Amid ruckus, the chair adjourned the House till 12:30 p.m. When the House met after the second adjournment at 12:30 p.m, the opposition members again continued with their protest over NEET paper leak issue. The presiding officer, Dilip Saikia, tried to take up the zero hour, but the opposition members continued their protest. Mr. Saikia said there should be healthy debate in the House and people have sent their representatives to raise important issues. The opposition members did not pay heed to the chair's advice. It led to adjournment of the House till 2 p.m. In the Rajya Sabha, the proceedings began with the oath of the newly elected and re-elected members. Leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, tried to raise the issue of NEET examination paper leak. However, due to uproar, the protest continued. The chair adjourned the House till 2 p.m.

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो श्रोताओं, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होती बल्कि उससे जुड़े लोगों की जिंदगी का रास्ता भी बदल देती है। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही फिल्म है और गाना सुन के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है जिस्म। साल 2003 में रिलीज हुई इस फिल्म में अपने बोल्ड विषय, दमदार संगीत और अलग तरह की कहानी की वजह से खूब चर्चा बटोरी थी। लेकिन जिस्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये कई लोगों के करियर का एक अहम मोड़ भी साबित हुई। तो अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे फिल्म जिस्म की, उससे जुड़े कुछ दिलचस्प कहानियों की और सुनेंगे इसके वो सदाबहार गीत जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने रिलीज के टाइम पे।

श्रोताओं, इस फिल्म का निर्देशन अमित सक्सेना ने किया था। निर्माण पूजा भट्ट और सुजीत कुमार सिंह द्वारा किया गया था। कहानी लिखी थी महेश भट्ट ने, डायलॉग लिखा था निरंजन अयंगर ने। और ये फिल्म 1981 की हॉलीवुड फिल्म बॉडी हीट से प्रेरित थी। तो चलिए आज की सफर की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के साथ। फिल्म जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के लिए भले ही नए थे, लेकिन उस वक्त मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी मशहूर थे। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा बसु, दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में कई लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि इस फिल्म को करने से बचें, क्योंकि उस समय इस तरह की फिल्म को काफ़ी बड़ा जोखिम माना जाता था। लेकिन बिपाशा ने दूसरों की राय से ज़्यादा कहानी और अपने किरदार पर भरोसा किया। बाद में उन्होंने माना भी कि जिस्म करना उनके करियर की सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। और जब फिल्म पर्दे पर आई तो जॉन और बिपाशा की जोड़ी ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया। क्या आप जानते हैं, फिल्म के क्रेडिट्स के मुताबिक जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु दोनों के लिए डबिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। जॉन के लिए विराज आधव और बिपाशा के लिए मोना शेट्टी ने अपनी आवाज़ दी थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस जॉन अब्राहम की

पहली फिल्म में उनकी अपनी आवाज नहीं थी, वही आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है जिस्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी एक वकील कबीर लाल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी में एक अमीर शादीशुदा महिला सोनिया खन्ना की एंट्री होती है। पहली मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्तों, भावनाओं और धोखे का ऐसा खेल शुरू होता है जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य सामने आता है, और यहीं से फिल्म दर्शकों को अंत तक अपने साथ बांधे रखती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसके गाने भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 9 साल बाद साल 2012 में इसका सीक्वल जिस्म 2 भी बनाया गया। हालांकि पहली फिल्म जैसे

सफलता तो उसे नहीं मिली, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म मानी गई। लेकिन जिस्म की कहानी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी, कैमरे के पीछे भी कुछ ऐसे ही किस्से बन रहे थे। फिल्म जिस्म की शूटिंग गोवा के अलग अलग खूबसूरत लोकेशन पर हुई और इसी शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम और बिपाशा के एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे रियल लाइफ भी में भी नज़र आने लगी। फिल्म ख़त्म हुई लेकिन उनकी दोस्ती एक लंबे रिलेशनशिप में बदल गई, जिसके बारे में उस दौर में हर मैगजीन और एंटरटेनमेंट पेज में चर्चा होती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का सबसे बेहद और खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। अब बात करते हैं इस फिल्म के संगीत की। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था एमएम किरवानी ने, जिन्हें हम एमएम करीम के नाम से भी जानते हैं। वही गीतों को शब्द दिए थे नीलेश मिश्रा और सईद कादरी ने। गानों को अपनी आवाज़ से सजाया था श्रेया घोषाल, रूप कुमार राठौर, उदित नारायण, के और खुद एमएम करीम ने। उस दौर में इस साउंडट्रैक की लगभग 15 लाख कॉपियां बिकी थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तो चलिए इसी खूबसूरत सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और फिल्म के अगले गीत के साथ और संगीत, एक शानदार संगीत आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं इस फिल्म के अवार्ड्स के बारे में भी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में श्रेया घोषाल को उनके यादगार गीत जादू है नशा है के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान मिला। वहीं इस फिल्म ने कलाकारों के करियर को भी नई उड़ान दी। जॉन अब्राहम को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि बिपाशा बसु को उनके दमदार और बोल्ड अंदाज के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल फीमेल का पुरस्कार भी दिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है जिस्म। और

गीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म से जिस्म के गीत ही आपको सुनने को मिलेंगे। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। फिल्म जिस्म के बारे में बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्सा सुनाया, कहानी और नगमे भी सुनवाए, बेहतरीन प्रस्तुति रही। हमें भी कार्यक्रम सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन और अपार हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से हैं और ये हैं, लिखते हैं कि आप आज आप चर्चा कर रहे हैं सन 2003 की फिल्म जिस्म की। जी हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र छिपा जी, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और ये है शांति नगर सोनीपत से और ये हैं स्वर्णजीत, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलार और विराज ठाकुरावाला से और ये है आरजे सा प्यार भरा नमस्कार आदाब अर्ज है गुरनौर से आदिल कमर और अली मुजफ्फर अली। ये है लिखते हैं, नमस्कार राखी बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन फिल्म जिस्म की खूबसूरत जानकारी और गीत सुन रहे हैं। नौहरा राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज जी का और ये हैं सुदर्शन रेडियो से आज की फिल्म जिस्म, बिल्कुल सही बात है। और ये है दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा और लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से मोहम्मद इसफाक और मोहम्मद असफाक, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा, आफरीन, कौसर और खतीजा जी का। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, फिल्म के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और बात करते हैं फिल्म, ये जो फिल्म थी जॉन अब्राहम के लिए एक बड़ी शुरुआत साबित हुई, बिपाशा को एक नई पहचान दी और बॉलीवुड को ये दिखाया कि थ्रिलर रोमांस और इमोशन का एक नया अंदाज में भी पेश किया जा सकता है। इस फिल्म की सबसे खास बात सिर्फ इसकी बोल्ड इमेज नहीं थी बल्कि उसकी कहानी, उसका बैकग्राउंड स्कोर और उसके गाने भी थे जिन्हें आज भी उतने ही मोहब्बत से गुनगुनाया जाता है। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी हम साथ साथ मोहब्बत से गुनगुनाते हैं।

हमारे कुछ श्रोताओं का मेल और आ गया है, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। आज आप बहुत अच्छी चर्चा कर रही हैं दीदी जी। राम राम। मॉडल टाउन से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, संदीप और जगमोहन और प्रतिभा किरण ठाकुर लिखते हैं। और ये हम आगे बढ़ते हैं, अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद और जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रोजी पर और विलिस, और ये ताज मोहम्मद अंसारी, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से।

और ये हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत और कमल साहनी पिंगा वाला चौक जालंधर से। और ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन से मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, इनका हमने पहले ही पढ़ लिया है। और यह कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत राहुल और गुरशब्द सिंह। तो दोस्तों हमारा जो ये सफ़र है इसको यही हम विराम देते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे दोपहर के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज़ के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्ते।

0: ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੈਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ICSSR ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੋਜ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਤੂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਜਲਾਸ 'ਚ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈਟੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 7 ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामा राय के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में खुर्द बुर्द किए जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब के साथ वफूस सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो ऐवान के उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। इनमें एन भास्कर राव, ओमवती देवी, सुधांशु सील, मेजर जनरल रिटायर्ड भवन चंद्र खंडूरी और केपी धनापालन और प्यारेलाल संखवार शामिल हैं। ऐवान में कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने भारत कतर ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया था। जनाब बिरला ने कहा कि कतर के अमीर के वालिद 18 साल तक इस ओहदे पर फायज रहे और जदीद कतर की बुनियाद रखी।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: स्पीकर मौसूफ ने जब सवालों के वक्फे की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाया। जनाब ओम बिरला ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो ऐवान का कामकाज चलाने में ताउन करें और ऐवान का वकार बरकरार रखें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्रवाई नए मुंतखब और दोबारा मुंतखब किए गए अरकान की हलफबरदारी के साथ शुरू हुई। बाद में ऐवान के उन साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका पिछले इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने का मामला उठाने की कोशिश की, अलबत्ता शोरगुल के तनाजुर में राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी और एहतजाज जारी रहने पर सदर नशी ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खा मानसून हो या मानसून इजलास, अगर ये दोनों सरगर्म रहते हैं तो ये इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब दोनों ही समर आवर होते हैं तो इसके नतीजे में मुल्क की बहबूद और सभी जानदारों की भलाई की राह हमवार होती है। वजीर आजम ने कहा कि ये एक मजबूत पैगाम है कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियत और उनकी उमंगें उतनी ही लामहदूद हैं जितना कि खुद खला है।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ एक महीने के अरसे में मुल्क ने कई संगे मील और कई कामयाबियां हासिल की हैं जिससे हर शहरी फख्र से सरशार हो जाता है। वजीर आजम ने कहा कि खा ये कौमी मंजरनामा हो, बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म हो और अब हत्ता के खला में भी भारत के लिए वाकई बड़े फख्र के लम्हात रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ खित्तों में पूरी दुनिया को लगातार जंग के खतरे से तश्वीश लाहक है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया में महाज आराई से भारत जैसे मुल्कों को बड़े बहरान का सामना है जो तवानाई के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करते हैं।
2: पश्चिम एशिया के युद्ध

0: के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानून और इंसाफ महकमे के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक 1956 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है, ताकि अदालत आलिया के जजों की तादाद मौजूदा के 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम एसआईटी ने राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी केस में अपनी कार्रवाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट एक मुहरबंद लिफाफे में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को पेश की गई। अदालत आलिया आज इस मामले की समाअत करने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सीसी नाव में मालदोवा की अपनी हमनसब माइया सांडो के साथ वफ़ सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मालदोवा की पार्लियामेंट के सद इगोर गोरोसू से भी मुलाकात करेंगी और मालदोवा भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से बातचीत करेंगी। इसके अलावा वो एक तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के अरकान से मिलेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का मालदोवा का यह पहला दौरा है। सदर जमहूरिया 3 मुल्कों मालदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर हैं। मालदोवा के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया दूसरे मरहले में कल शिमाली मकदूनिया पहुंचेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का भी यह पहला दौरा है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन निस्टिल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरान और अमेरिका ने लगातार 90 दिन एक दूसरे पर हमले किए हैं। कलीदी अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुस के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने जुनूब मगरबी ईरान में हुरमुज कस्बे को निशाना बनाया, जबकि उर्दुन, कुवैत और बहरीन में फिर से ईरान के हमले होने की इत्तला मिली है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ने एक मकामी अहलकार के हवाले से बताया है कि अमरीकी हमले की वजह से बूशहर सूबे में दश्ती काउंटी के इंतजामी मरकज हुरमुज के कुछ हिस्सों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। इत्तलात के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उनमें पासदारा ने इनकलाब की बहरी फोर्सेस से वाबस्ता फौजी ठिकाने शामिल हैं। उधर उर्दुन के सरकारी नशियाती इदारे ने कहा है कि मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए ईरान से दागे गए 3 मिजाइलों को बीच में ही मार गिराया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन की हंगामाराई के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई बार मुलतवी करना पड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को मुफीद बनाए जाने पर जोर दिया है और कहा है कि इससे मुल्क की बहबूद की राह हमवार होगी। सुप्रीम कोर्ट में उन दरखास्तों की समाअत होने वाली है जिनमें राम मंदिर चढ़ावे में हुर्दबुर्द किए जाने के केस की तहकीकात की अपील की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा के अपने हमनसब के साथ वफ सतह की बातचीत करने वाली हैं और आबनाए हुरमुस के मामले पर अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Monsoon session of Parliament begins today. Both houses witness multiple adjournments amid opposition uproar. Prime Minister Narendra Modi calls for productive monsoon session of Parliament, says it will lead to welfare of the nation.

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूँ।

0: को पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
1: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the House to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the House.
1: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन

0: तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल

0: के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये

वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार, जो होता है सदाबहार सितारों के नाम। जी हाँ, आज जिस अभिनेता की हम बात करेंगे उन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से जुबली कुमार कहती थी। एक ऐसा सितारा जिनके रोमांटिक अंदाज ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। तो इस आधे घंटे के फिल्मी सफर में मेरे साथ यानी रैना तंवर के साथ जुड़े रहिए। वो कैसे? वो ऐसे

जी हाँ, आप भी सबको छोड़कर हमारे पास आ जाइए। हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और जिन्होंने हमें सबसे पहले मैसेज करके सही जवाब दिया है वो हैं दिग दर्शन और कविता गौर जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज के फेवरेट श्रोता का खिताब पाने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये कार्यक्रम आज समर्पित है राजेंद्र कुमार जी को। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और इनका जो जन्म है आज ही के दिन, यानी कि 20 जुलाई आज ही की तारीख पर, यानी कि आज के दिन सन 1929 को सियालकोट, जो कि आज पाकिस्तान में हुआ करता है, विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष किया। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज आए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सही जवाब जिन्होंने दिया था हमने बता दिया है, लेकिन उनके साथ साथ स्वर्ण सिंह जी ने हमें मैसेज किया, नितेश देवांगन जी ने हमें मैसेज किया है, और नितेश कुमार देवांगन जी, और इस तरीके से स्वर्ण दलदीत, राजदीप गुरनूर, गुरनाल अविराज जी ने हमें मैसेज किया, और नितेश जी ने, दुर्गा प्रसाद, पराग पुना और कृष्णा देवांगन जी ने, और फिर हमें तनुजा जी ने किया मैसेज, शांत लखनलाल, सावित्री बाई, नीतीश कुमार, तनुजा जी, और इसी तरह से यासीन, मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, मिफ्रा बेबी, सादिया, और इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए, मैसेज करते रहिए, और सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा।

जी हाँ, किस किस के होश उड़ गए हैं, अभी भी पुराने दिन याद आ जाते हैं ना ये गाने सुनकर। अपना वो दिन जब हम भी किसी को याद किया करते थे, खत लिखा करते थे।

कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार साहब शुरू से ही गांव और अपने गांव की उस मिट्टी से जुड़े एक सादगी भरे इंसान थे। बचपन से ही उन्हें कला से प्रेम। जहां वो गांव के बच्चे गुल्ली डंडा चोर सिपाही खेला करते थे, वो राजेंद्र कुमार जी थे जो अपने गांव के स्कूल में स्टेज पर कविताएं और किस्से नाटक कर लोगों को प्रभावित करते थे। ये अदाकारी देखकर गांव के सभी लोग कहते थे कि ये लड़का एक दिन तो कुछ करके दिखाएगा। और उनकी माँ का भी यही दृढ़ विश्वास था और आशीर्वाद था जो आज उनको हमारे बीच इस बखूबी नगीने की तरह हम प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। और हमारे पास इसी तरीके से बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, अपने मैसेज करके हमें एक हौसला अफजाई करते हैं। तो ये हमारे पास अमर रमेश जी का भी मैसेज आया है जिन्होंने टेलर मास्टर किशन लाल खत्री, अमर रमेश कुमार, जफर सादिक और शंकर गुल, इनको हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। गुरमीत सिंह जी ने हमें साउथ एक्सटेंशन से मैसेज करके भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें तुलसी मस्कीन जी ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हमें मैसेज किया है और सबके जवाब एकदम सही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धर्मेंद्र छिप्पा जी ने भी हमें मैसेज किया है, कपिल और पूजा परिहार जी ने, और उसी तरह से निसार अली और नौशाद सलमानी तेलीवाना उत्तराखंड से, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज कर रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, गुड आफ्टरनून। और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए। हरजिंदर सिंह छिंदा जी ने हमें मैसेज किया है, जसवीर जस्सी सीता गीता गांव नथाना पंजाब से, क्या बात है। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में और बताइए कि आपको और क्या क्या हमें आप हम सुधार कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए और इस कार्यक्रम का मजा लेते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले इस नगमे के साथ।

जी हाँ, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल पर रैना तंवर के साथ आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज है हमारे कलाकार राजेंद्र कुमार की यादों के साथ। जी हाँ, राजेंद्र कुमार जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ मदर इंडिया से, लेकिन असली स्टारडम मिला 1960 के दशक में, जब उनकी एक के बाद एक फिल्में लगातार सिल्वर जुलवी बनाने लगी। जी हाँ, लगातार सिनेमा घरों में 25 हफ्तों तक चलती थी, तभी तो सिल्वर जुबली के नाम से ये जाने जाने लगे। हालांकि उनका असली नाम राजेंद्र कुमार तुली था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करे सलाम, बस यही उनके जीवन की असली है पहचान। और हम गुरमीत जी से कहना चाहेंगे कि हमने आपका मैसेज शामिल किया है, तो आप हमारा ये मेरा प्रेम पत्र, मतलब आपके इतने अच्छे जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, आपका हम मैसेज ले चुके हैं, तो इसलिए हम नाराज़ बिल्कुल ना हुए। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तुलसी मस्कीन जी का भी आया है और आर कुमार जी का मैसेज आया है, वर्डिंग खेड़ा पंजाब, मिंटू पिंकी सभी, आरती अरोड़ा और धर्मेंद्र छिपा जी का हम बता चुके हैं। उसी तरीके से हमारे पास मसरूर हसन जी का सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्सा, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम, अदीम परिवार वाले सभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मक्कर जी ने हमें, ज्योति मक्कर जी, मन्नत मक्कर, भारत और शाहनी सभी ने हमें मैसेज किया है। और इस तरीके से हमें आप अपना प्रेम भेजते रहें, हम आपका जितना समय होगा, जितना हमसे होगा, हम सभी के मैसेज शामिल करेंगे, तो नाराज बिल्कुल मत होइएगा। अगला नगमा, हम बढ़ते हैं इस अगले नगमे की ओर। अभी आपने जो सुना था वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, संगम फिल्म का ये मेरा प्रेम पत्र था, और अगला ये जो नगमा है वो क्या है, आप सुनिए रफ़ी जी की आवाज़ का।

देखा जी, पत्र भी दे दिया, अब इजहार हाल भी कर दिया। कितने सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि पिछले कार्यक्रम में मैंने जो पेश किया था वो था कुमार गौरव जी के बारे में, और आज मौका मिला है उन्हीं के पिता, और आज मजा आ रहा है कार्यक्रम में जुड़े रहने का। और पिछली जो याद थी, जो गीत थे, उनको सुनकर एक श्रोता ने एक मैसेज किया था जिन्हें मैं शामिल नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने गीत सुनकर अपनी संवेदनाएं, अपने दिल की भावनाएं हम तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक श्रोता थे फारूक अली खान जी, जिन्होंने लिखा ये गीत सुनकर उन्हें बेटे की याद आ गई जो विदेश में है। देखिए, जो विदेश में है, अपने बच्चे उनके दूर हैं, और उनसे मैं यही कहूंगी कि अपने पिता को रोज मैसेज करें, उनसे बात करें, उनका दिल रखें। और आजकल तो बहुत कुछ आसान है, हम बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं आसानी से। वहीं अनिल मोहन जी ने भी हमें एक फिल्म से जुड़ी एक याद को बताया कि उस समय कैसेट का जमाना था और उनकी कजन की शादी में उन्होंने सारे गीत वही उसी फिल्म के उसी कलाकार के बजाए थे, और उन्होंने अपने ऊपर ये पूरी शादी का समारोह बस उसी फिल्म के गीत प्ले कर किया था। क्या बात है। और हमारे पास इसी तरह के सुधांकर जाधव जी का मैसेज आया, सभी के नाम हम नहीं ले पाते हैं तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने हमें भेजा है मैसेज, और इसी तरह इब्राहिम सिंह जी ने हमें भेजा है, संजय ढिंगिया जी ने हमें भेजा है मैसेज, गुरमीत सिंह जी ने हमें मैसेज कर दिया है, अनिल मोहन जी ने बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया है, और मस्कीन दादा जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से तुलसी मस्कीन जी ने हमें मैसेज किए हैं, इशाक मोहम्मद जी ने छत्तीसगढ़ से हमें, मोहम्मद इशाक जी ने मैसेज किया है, और पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से हमारे पास महाराष्ट्र से इन्होंने मैसेज किया है, नारायण सोपान, आशीष, निर्मला, विशाल, पीएस नाहस्कर, और प्रकाश वर्मा जी का, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से हाँ, हम सभी को लेना चाह रहे हैं एक ही कलाकार के इसमें, मोहम्मद कमर जी ने हमें मैसेज किया, और वो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिएगा। स्वर्ण सिंह जी ने भी हमें मैसेज किया है, रोजी डे कास्ट्रो ने हमें मैसेज किया है, पर्ल और विलिस और जॉन हमें मैसेज कर रहे हैं, जॉन साहब भी, और इस तरीके से उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी का मैसेज ले, तो इसलिए बुरा ना माने। और हम अब बात कर रहे हैं राजेंद्र साहब जी की, जो कि उन्होंने कहते हैं ना कि भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री पर सम्मानित किया गया था। कैंसर बीमारी शिकार होने के कारण 12 जुलाई 1999 को इस महान अभिनेता का निधन हो गया। 1950 में फिल्म जोगन से एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत करने वाले उस महान अभिनेता ने आज बड़े पर्दे पर जो कर दिखाया, वो हम सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ दी, उनको हम शत शत नमन करते हैं। तो सुनते हैं ये वाला नगमा।

जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कान और आपको दे सुकून। नेक और अच्छे नागरिक बने। सुनते रहे आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें

0: बर्बाद हो गया था।
1: अरे सुनती हो राजू की माँ, राजू के लिए रिश्ता आया है। लड़की अच्छे घर की है और सुशील है।
2: सुनो जी, हमारा बेटा बहुत सुंदर है तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, लड़की बहुत सुंदर है।
2: ये ठीक है, एक बार राजू से भी पूछ लेते हैं।
1: अरे जब राजू शाम को घर आ जाएगा तुम उससे बात कर लेना।
2: अरे आ गया बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
3: ठीक है माँ।
2: राजू बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
3: कहो माँ, क्या कहना है?
2: बेटा आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम कहो तो हम लड़की वालों से बात करें।
3: जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ, आप वैसा ही करें। आप मेरा अच्छा बुरा मुझसे अधिक जानती हो, ठीक है?
2: ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे।
1: राजू की माँ, क्या तुमने कल राजू से बात की थी क्या?
2: हाँ जी, मैंने शाम को राजू से बात की थी। वो शादी के लिए तैयार है, अब आप लड़की वालों से बात कर लीजिए।
1: ठीक है, फिर आज मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ।
0: फिर राजू के पिताजी लड़की वालों के घर चले जाते हैं और राजू के रिश्ते की बात करते हैं। वहीं लड़की के पिताजी राजू के पिताजी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। राजू के पिताजी बताते हैं कि राजू मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छा कमाता है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और राजू और लता का रिश्ता पक्का करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजू और लता की शादी हो जाती है। लता सुबह उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और रसोई में काम करने चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लता भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात लता के ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधे पर आ गई और राजू परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि वह सब कैसे संभालेगा।
3: लता जल्दी से खाना ला दो, मुझे काम पर भी जाना है।
4: जी खाना तैयार है, खा लीजिए।
2: राजू बेटा ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम से खाना खा ले।
3: पता नहीं कब ठीक होगा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
5: राजू क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो।
3: क्या बताऊँ यार, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ।
5: दोस्तों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
3: चलो ठीक है, शाम को चलते हैं।
4: माँ जी वो अभी घर नहीं आए, काफी देर हो गई है। हर रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं।
2: बहू फोन लगा कर तो पूछ, वो कहाँ रह गया है।
4: जी माँ जी।
3: हेलो।
4: हेलो जी, आप अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है। माँ जी भी पूछ रही है।
3: लता माँ को कह दो चिंता ना करे, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ।
4: ठीक है जी।
2: बहू क्या कहा राजू ने, कहाँ पर है वो।
4: माँ जी वो अपने दोस्तों के साथ हैं, जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए आप खाना खा लीजिए।
0: फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लता दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि राजू नशे की हालत में खड़ा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह देखकर लता को बहुत दुख हुआ। वो राजू को चुपके से उसके कमरे में ले गई। यदि माँ जी को इसके नशे के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा।
4: सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आप नशे की हालत में घर आए, अगर माँ जी देख लेते तो उन्हें कितना बुरा लगता। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
3: चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है।
4: जी वो मैं तो

0: मैंने कहा ना चुप रहो, जाओ अपना काम करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ।
1: बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। जी माँ जी, ये लो माँ जी।
0: लता लता, अरे कहाँ मर गई? मैंने खाना लाने के लिए कहा था, अब तक क्यों नहीं लेकर आई?
1: जी अभी आई। अरे बहू, ये राजू को क्या हुआ? वो इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आई। ये लीजिए, खाना खा लीजिए।
0: फू, ये क्या बनाया है? ना इसमें नमक है ना मिर्च। अरे तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? अभी बताता हूँ तुझे।
1: माँ, मत मारिए मुझे, क्यों मार रहे हो?
0: अभी बताता हूँ तुझे।
1: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? क्यों मार रहा है बहू को? छोड़ इसे, मत मार। क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने?
0: अरे माँ आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना। आज नहीं

0: तुझे।
1: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्यों मार रहा है बहू को? छोड़ इसे, मत मार। क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने?
0: अरे माँ आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना। आज नहीं छोड़ता तुझे।
1: तू छोड़ इसे और बाहर जा। बहू चुप हो जा, रो मत, मैं समझाऊंगी उसे, अभी वो गुस्से में है ना।
2: माँ जी मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि कुछ पूछूं तो मुझे बताते भी नहीं, क्या हुआ है, इतना नाराज क्यों है?
1: कोई बात नहीं बहू, अभी वो गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
3: धीरे धीरे समय बीतता।

0: घर में कुछ सामान भी नहीं है।
1: माँ जी, आप किसे कह रही हैं? ये तो शराब के नशे में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने पड़ोस की बहन से बात कर ली है, कल से मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूँगी। आप अपने और अपने पोती का ध्यान रखना।
2: अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है?
0: अरे बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? बहू घर पर नहीं है।
2: घर पर नहीं है? अरे कहाँ मर गई वो?
0: वो आज खेत में मजदूरी करने गई है, शाम को ही घर आएगी।
2: मजदूरी करने? अरे माँ, वो मजदूरी करने नहीं, मेरी बेइज्जती करने गई है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं काम नहीं करता, बस वही काम करती है। आने दो उसे, आज शाम को मैं बताता हूँ उसे।
1: लो माँ जी, आज जो मजदूरी मिली है, मैं उससे घर का राशन लेके आई हूँ।
0: ठीक है बहू, अच्छा किया, रसोई में रख दो।
2: आ गई कुलटा, किस यार से मिलने गई थी बता मुझे?
1: ये क्या कह रहे हैं आप? आप होश में तो हैं? कुछ भी कह रहे हो, छोड़िए मुझे।
2: चल निकल मेरे घर से, आज मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल निकल।
0: अरे बेटा छोड़ दे बहू को, क्यों मार रहा है, छोड़ दे।
2: माँ तू बीच से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से। मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी, समझी?
3: फिर लता अपने माता पिता के घर आ जाती है और वहीं रहने लगती है।

0: वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन राजू को उसके पुराने दोस्त ने, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, नशे के हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और उसे उठाकर घर ले गया।
1: नमस्ते आंटी जी, मैं राजू का दोस्त हूँ, हम दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे।
2: नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, ये कहाँ मिला तुझे? मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा।
1: आंटी जी, मैं रास्ते से आ रहा था

0: तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोच।
1: तू ठीक कह रहा है यार। जब से मैं शराब पीने लगा हूँ ना, मेरी परेशानियाँ और बढ़ने लगी हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लता के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया, वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया यार।
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा अगर तू चाहे तो।
1: वो कैसे?
0: पहले तो तू इस शराब को छोड़ दे और भाभी को घर ले आ, और उससे माफी मांग, वो तुम्हें माफ कर देगी। और कल मैं तेरे लिए कंपनी में बात करूंगा कि तुम्हें वो काम पर रख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: ठीक है यार श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कल ही तेरी भाभी के घर जाकर उससे माफी भी मांगूंगा और उसे अपने साथ ले आऊंगा। माँ तुम भी मुझे माफ कर दो।
2: फिर राजू अगले दिन लता के घर जाता है और माफी मांग और लता को घर आने के लिए कहता है। लता भी राजू को माफ करती है और उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। लता को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लता अपनी सास के पांव छूती है और अपनी बेटी के गले लगती है। कुछ दिनों बाद राजू को फिर से कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह काम करने लगता है। वहीं लता भी सिलाई का काम करती है और दोनों मिलकर कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ। यह आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। और आज के मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।

जी हाँ श्रोताओं, मैटनी मेलोडीज में इस वक्त आप सुन रहे थे गीत फिल्म असली नकली से, और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने, और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। और ये जो गीत था वो फिल्माया गया था देवानंद और साधना जी पे। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये जो सॉन्ग है ये है फिल्म लोफर का। इसे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी और इसके बोल लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। इस सदाबहार गाने को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने और फिल्माया गया था धर्मेंद्र और मुमताज़ भी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।

श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे हैं वो गीत है किशोर कुमार की मखमली आवाज में, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और इस गीत को बेहतरीन संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने।

का दारोमदार इसी बात पर मुनहसिर है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में किस कदर आगे है। तो आइए हालिया दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर एक नज़र डालते हैं। स्मार्ट ड्रेसिंग जख्म का दर्द कम करने और जिल्द भरने में मददगार। सामीन, मरकजी आला तालीमी इदारे NIT रावरकेला के महक्कीकीन ने जख्मों के इलाज के लिए एक जदीद स्मार्ट ड्रेसिंग तैयार की है जो न सिर्फ जख्म में इन्फेक्शन के खतरे को कम करती है बल्कि ड्रेसिंग तब्दील करते वक्त होने वाले दर्द और तकलीफ में भी नुमाया कमी लाती है। महक्कीकीन के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी जख्म को तेजी से भरने में मददगार साबित हो सकती है और मुस्तकबिल में जदीद तिब्बी इलाज के शोबे में अहम पेशरफ्त की बुनियाद बन सकती है। NIT रावरकेला के शोबे हयातियाती टेक्नोलॉजी और तिब्बी इंजीनियरिंग के मुआविन प्रोफेसर प्रसून कुमार ने बताया कि जिन मरीजों के जख्मों की बार बार ड्रेसिंग करना पड़ती है उन्हें हर मरतबा शदीद तकलीफ और बेआरामी का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक ये नई स्मार्ट ड्रेसिंग इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है ताकि इलाज को ज्यादा आरामदेह और मुअसर बनाया जा सके। क्या मस्नूई जहानत का बुलबुला फट गया है? क्या हिंदुस्तान को अमरीकी मार्केट में मंदी का फायदा होगा? सामीन, पिछले 3 सालों से दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकार AI यानी मस्नूई जहानत में लापरवाही से सरमाया कारी कर रहे हैं, लेकिन अब एक ही दिन में इतनी रकम गायब हो गई है जो कि कई ममालिक की सालाना आमदनी के बराबर है। एक ही दिन में मार्केट वैल्यू में 1.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का सफाया हो गया है। सरमायाकारों को मस्नूई जहानत कंपनियों से मौजजाती नतायज की उम्मीद थी, लेकिन जब हकीकी नतायज सामने आए तो वो तवक्कुआत से कम रह गए। खौफो हरास फैल गया और कई कंपनियों का स्टॉक एक ही दिन में 6% गिर गया। जमीन की जानिब गिरती नासा की स्विफ्ट खलाई दूरबीन को बचाने का मिशन, ज्यादा बुलंद मदार में पहुंचाने की कोशिश। सामीन, अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अपनी 22 साल पुरानी स्विफ्ट खलाई दूरबीन को जमीन के माहौल में दाखिल होकर

किसी पुरानी खलाई दूरबीन को ज्यादा बुलंद मदार में मुंतकिल करके उसकी अमली मुद्दत में इजाफा किया जाएगा। नासा के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ स्विफ्ट खलाई दूरबीन का मदार मुसलसल कम होता जा रहा है। अगर इसकी बुलंदी में इजाफा ना किया गया तो इम्कान है कि रवां साल के आखिर तक ये जमीन के माहौल में दाखिल होकर जल जाएगी। इसी खतरे के पेश नज़र इदारे ने इस खसूसी मिशन का आगाज किया है ताकि दूरबीन को महफूज रखते हुए इसकी खदमात मजीद जारी रखी जा सकें। समीन, साइंसी खबरों का ये प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इससे कबल आइए जगजीत सिंह की आवाज़ में समाअत करते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

खलाई स्टेशन में मिर्च की काश्त। नासा मुस्तकबिल के तवील खलाई मिशनों की तैयारी में मसरूफ। सामीन, अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खला में बागबानी के अपने अहम तजर्बात की नई तस्वीर जारी करते हुए बताया है कि पौधों की काश्त सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब खलाई माहौल में भी सब्जियां और पौधे उगाने की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस मंसूबे का मकसद मुस्तकबिल के तवील खलाई सफर, खास तौर पर चांद और मरीख के मुमकिन मिशनों के लिए बेहतर तैयारी करना है। ये तजर्बा ऐसे साइंसी मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत खलाई माहौल में खुराक पैदा करने के इम्कान का मुताला किया जा रहा है। मरीख के माहौल पर तहकीक करने वाला नासा का पहला मिशन मयून खत्म, खलाई जहाज से राबता मुनक़ते। सामीन, अमरीकी खलाई इदारे नासा ने मरीख के माहौल और उसमें वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों का मुताला करने वाले अपने तारीखी मिशन मार्स एटमोसफियर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन यानी मयून के बाजाबदा खात्मे का ऐलान कर दिया है। इदारे के मुताबिक दिसंबर 2025 में खलाई जहाज से राबता मुनक़ते होने के बाद इसकी बहाली की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके नतीजे में मिशन को खत्म करने का फैसला किया गया। इब्तदाई मंसूबे के तहत इसकी मुद्दत सिर्फ 1 साल मुकर्रर की गई थी, ताहम खलाई जहाज ने तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाई और 100 बरस से जायद अरसे तक साइंसी मुशाहदात जारी रखे। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नासा ने फरवरी में एक तहकीकाती बोर्ड तश्कील दिया था। बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राबता मुनक़ते होने की वजूहात का तायुन करे और ये जांच करे कि आया खलाई जहाज को दोबारा फ़ाल बनाया जा सकता है या नहीं। जापान ने खलाई प्रोग्राम में अहम संग मील उबूर कर लिया। सामीन, जापान की खलाई एजेंसी के मुताबिक रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट RVX रॉकेट को शुमाल मशरकी जापान के नोशेरू टेस्टिंग सेंटर से आजमाया गया, जहां रॉकेट तकरीबन 11 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा और फिर 16 मीटर दूर सीधी हालत में कामयाबी से जमीन पर उतर गया। ये पहला मौका है कि जापानी खलाई एजेंसी किसी रॉकेट को कामयाबी से लॉन्च करने के बाद बहिफाजत वापस उतारने में कामयाब हुई है। जैक्सा का कहना है कि अगले मरहले में RVX रॉकेट को तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी तक भेजने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके बाद मुस्तकबिल में इसे मदार परवाजों के लिए इस्तेमाल करने की राह हमवार होगी। ये कामयाब आजमाइश ऐसे वक्त में हुई है जब एक रोज कबल चीन ने भी समंदर में नस्ब जाल नुमा निजाम के जरिए दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की कामयाब लैंडिंग का मुजाहरा किया था।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं
1: आकाश कुमार।
0: और आकाश, क्या है आज खास कार्यक्रम में? सबसे पहले ये हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, और सबसे पहले खास तो यही है, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और चैंपियन कौन है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। इसके अलावा क्रिकेट की बात करेंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडीआई खेला गया, उस पर विस्तृत जानकारी रिपोर्ट तो आपको देंगे ही, साथ ही साथ एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल सीरीज चल रही है हमारी, और उस पर आज हम बात करेंगे पैरा पावर लिफ्टिंग की, और रेसलिंग रैंकिंग सीरीज जो बुडापेस्ट में आयोजित है उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा ग्रीको रोमन में वो जानेंगे। साथ ही साथ एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे, आईएसएफ वर्ल्ड कप पर टीम रवाना हो चुकी है, कितनी तैयारियां हैं, और ये सब आपको हमारे सहयोगी शाहिद आजमी की रिपोर्ट में आप जान पाएंगे। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स राउंड 4 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, और यूटीटी सीजन 7 का क्या है हाल वो हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे।

0: फीफा की बात करेंगे सबसे पहले। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है और चैंपियन बन गया है स्पेन। खिताबी मैच स्पेन ने जीता और अर्जेंटीना को हराया, और अर्जेंटीना जो है अपना जीत का सपना पूरा नहीं कर पाया। लगातार दूसरी जीत होती अगर अर्जेंटीना जीतता तो। क्या रहा मैच का हाल, आइए सुनते हैं फीफा की इस रिपोर्ट में।
1: फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे रोमांचक महाकुंभ का अब समापन हो चुका है। 11 जून से 20 जुलाई 2026 तक चले फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों को रोमांच, जुनून और यादगार लम्हों का ऐसा संगम दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार टूर्नामेंट की मेजबानी तीन देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर की। पहली बार 32 की जगह 48 टीमें मैदान में उतरी और 16 विश्व स्तरीय स्टेडियमों में खेले गए 104 मुकाबले ने इस विश्व कप को अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बना दिया। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में विश्व फुटबॉल के दो दिग्गज टीमें स्पेन और अर्जेंटीना खिताब के लिए आमने सामने थी। 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली। स्कोर बोर्ड पर 0-0 की बराबरी रही, लेकिन स्पेन ने पूरे मुकाबले में गेंद पर करीब 65% कब्जा बनाए रखते हुए लगातार अर्जेंटीना के गोल पर दबाव बनाए रखा। मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ आया 90 मिनट के बाद अतिरिक्त तीसरे मिनट पर, जब अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा। अर्जेंटीना 10 खिलाड़ी के साथ खेलने को मजबूर हो गई और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में 106वें मिनट पर स्पेन के कोच का दाव सफल साबित हुआ। विकल्प के तौर पर मैदान में आए फेरान टोरेस ने निको विलियम्स के शानदार पास को गोल में बदल दिया। यही एक गोल स्पेन के लिए इतिहास लिख गया। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। स्पेन के मिडफील्ड मास्टर रॉड्री को शानदार

0: प्लेयर चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित प्रदर्शन के लिए नीदरलैंड्स को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1: तो स्पेन ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया और अब तक वर्ल्ड कप का लगातार दो बार खिताब सिर्फ ब्राजील और इटली ही जीत पाए हैं और अर्जेंटीना ये इतिहास रचने से चूक गया। एक्सपर्ट से बात करी हमने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजा रामन क्या कहते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप पर, आइए सुनते हैं।
2: जिस तरीके से फाइनल मैच हुआ है, स्पेन का दबदबा रहा और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अर्जेंटीना चैंपियन बनने का, दोबारा चैंपियन बनने का प्रयास कर रहा है। मेसी जैसे प्लेयर के होते हुए शायद उनके प्रयास कमजोर पड़ गए, लेकिन स्पेन की जितनी तारीफ की जाए कम, बॉल पोजीशन हो या नंबर ऑफ शॉट्स ऑन गोल हो, स्टैटिस्टिक्स उनके फेवर में है और ये दिखाता भी है और हुआ भी था मैच में कि अर्जेंटीना को कोई मौका ही नहीं थी और जो दो शॉट्स अर्जेंटीना के कोशिश हुए थे दोनों एक्स्ट्रा टाइम में आए थे। स्पेन इज डिजर्विंग विनर और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वो फाइनल खेले हैं, हालांकि फुल टाइम में रेगुलेशन टाइम में जीत लेना चाहिए था स्पेन को, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जीतना कोई बात नहीं, लेकिन दे आर डिजर्विंग चैंपियंस।
3: स्पेन डिजर्व करता था, लेकिन सर अर्जेंटीना कहीं ना कहीं स्पेन के सामने कमजोर दिखा, अटैक इतना कर नहीं पाया, कहां कमी रह गई सर?
2: उनकी कमी नहीं, स्पेन की तैयारी बहुत सही थी। स्पेन ने अर्जेंटीना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा था और पूरे टूर्नामेंट में ये कहना होगा कि अर्जेंटीना मेसी के जादू पे डिपेंड हुआ था और वो जादू कल चला नहीं, देर रात में नहीं चला, हमारे यहाँ देर रात चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से मेसी को रोका उन्होंने, मेसी का जादू रोका, आई थिंक स्पेन अपनी तैयारी दिखा रही थी। सिर्फ तैयारी नहीं, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन उनका बहुत बढ़िया रहा, रोक रखे थे मेसी को। हमेशा यह होता है कि मेसी लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हैं और अगर मैच उनके पक्ष में नहीं जा रहा तो फिर वो राइट में आते हैं और फिर वहां से कुछ कर दिखाते हैं, उस वो करने का उनको मौका नहीं दिया और ओवरऑल टीम शायद स्पेन की बेहतर थी, तभी तो ये रिजल्ट निकल गया।
3: एक और चैंपियन की अगर हम बात करें, रोनाल्डो की बात करें, तो उनका ये आखिरी विश्व कप था।
2: अच्छे प्लेयर है लेकिन शायद मेसी के स्तर के प्लेयर नहीं है, वो भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है, विश्व में सबसे अच्छे प्लेयरों में से माने जाते हैं रोनाल्डो पुर्तगाल के, लेकिन मेसी वाला स्टैंडर्ड शायद वो बड़ा मुश्किल होता उनको अपनाना। एक्चुअली इट नॉट फेयर, दोनों को कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन पुर्तगाल वाज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रोनाल्डो और उनकी भी चली नहीं इस टूर्नामेंट में, और अफसोस यही रहेगा कि मेसी जैसे प्लेयर और रोनाल्डो जैसे प्लेयर और सुआरेस जैसे प्लेयर फिर नहीं दिखेंगे, लेकिन ये खेल का एक रिवाज है, कुछ पुराने प्लेयर जाते हैं, कुछ नए प्लेयर आते हैं, उभर कर आते हैं, नए सितारे आते हैं और विश्व में जो फुटबॉल फैंस है उन्हें प्रेम होता है नए प्लेयर्स के साथ। आप देखिए पहले थे, उनके बाद मैराडोना बहुत बड़े स्टार बने, आज की तारीख में मेसी का चलता है, कल कोई और प्लेयर आएगा और ये खेल है और हमको अपनाना पड़ेगा कि शेल्फ लाइफ काफी लिमिटेड होता है। रोनाल्डो और मेसी काफी लंबा खेल गए और दो अच्छे बेहतरीन प्लेयर, दुनिया की किस्मत थी कि हमारे टाइम में ये आए और दे हैव एंटरटेन्ड अस और फिर अपना रिटायरमेंट भी ले लेंगे।
3: स्पेन के कप्तान अगर रॉड्री की बात करें तो उन्होंने मिडफील्ड की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई, उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से भी नवाजा गया, यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड उन्हें दिया गया।
2: डिजर्विंग है, फिर से यही कहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेला, अपनी टीम को संभाला, अटैक को देखा और फिर डिफेंस में भी बहुत मदद की, इट इज नेचुरल दैट ऐसे प्लेयर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट माना जाएगा। जाहिर सी बात है, हमेशा यही देखते हैं कि गोल स्कोरर कौन, सबसे ज्यादा गोल कौन बनाया है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग बैठ के डिसाइड किए कि ये अवार्ड इनको जाए
3: और गोल्डन बूट अवार्ड मिला किलियन एम्बापे को।
2: इतने सारे गोल बनाए उन्होंने फ्रांस के लिए, हालांकि फ्रांस फिनिश्ड फोर्थ, इंग्लैंड से भी उनका हार का सामना करना पड़ा, उनको लगातार दो मैचेस हारे हैं। फ्रांस से लोगों की उम्मीद थी कि वो फाइनल खेलेंगे और फिर जीत भी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला है, एम्बापे ने खेला है और इतने सारे गोल बनाए, यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर. लेकिन फ्रांस बेहतरीन टीम थी, सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर फोर्थ प्लेस हासिल करना बहुत कम टीम के पास ऐसा

0: मौका मिलता है और फिर ऐसे प्लेयर हम सबके दिलों पे राज करने लग जाते हैं।
1: पूरे अगर फीफा वर्ल्ड कप पर अगर नजर डालें तो कौन सी टीम ऐसी थी जिसने अपनी और अपना ध्यान आकर्षित किया और अपने प्रदर्शन से सबको अचंभित कर दिया?
0: स्पेन लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिया है और अर्जेंटीना, क्योंकि वो कई सारे मैचेस लास्ट मिनट में एक या दो गोल बना के जीते हैं तो अर्जेंटीना को और हमेशा सबका ध्यान जाता है। दे विल ऑलवेज रिमेन अ पेरिनियल फेवरेट। दुनिया में कोई भी ऐसा विश्व कप टूर्नामेंट नहीं होगा जहां पे अर्जेंटीना की ओर सबका ध्यान ना जाए, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन टीम्स हैं, स्पेन स्पेन हो गया, इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, फ्रांस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, नॉर्वे, उनके भी कई सारे फैंस हैं, तो बहुत अच्छी टीम्स थे। लेकिन अफसोस होता है दीपिका, इतने सारे टीम होने के बावजूद हमारा टीम वहां नहीं पहुंचता है। होपफुली हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और फिर हम सिर्फ खेल प्रेमी नहीं होते हुए खिलाड़ी भी हमारे यहाँ से बहुत सारे निकले और फिर वो स्टैंडर्ड उठाए ताकि हम भी जाके विश्व कप हमारा टीम अच्छा प्रदर्शन करे।
2: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर क्रिकेट फैंस को देखने को मिला रनों का ऐसा तूफान जिसने आखिरी ओवर तक रोमांच बनाए रखा। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक जड़ा, विराट कोहली ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। इंग्लैंड ने तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारत को 27 रनों से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर अपने नाम कर ली। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय गेंदबाजी शुरुआत से ही दबाव नहीं बना सकी। ओपनर बेन डेकेट और जैकब बेथल, इन दोनों के बीच पहले ही विकेट के लिए 192 रन की शानदार साझेदारी हुई। बेन डेकेट ने 141 रन की शानदार पारी खेली जबकि जैकब बेथल 91 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद डेथ ओवर्स में जो रूट ने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए और कप्तान जॉश बटलर ने महज 13 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। 50 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट जरूर लिए लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह बेअसर दिखाई दिए। 388 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले ही विकेट के लिए 147 रन जोड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास रच दिया। रोहित ने सिर्फ 110 गेंदों में 138 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। इसके साथ ही रोहित शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और 60 गेंदों पर 74 रन बनाकर भारत की उम्मीदें जिंदा रखी। लेकिन जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे तब तक ऐसा लग रहा था कि भारत इतिहास रच देगा, लेकिन 38वें ओवर के बाद मैच ने पूरी तरह करवट बदल ली। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने अपने घातक स्पेल से भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। करन ने लगातार 4 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। ईशान किशन 14 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। केएल राहुल भी सिर्फ 12 रन ही बना सके। आखिरी ओवरों में निचले क्रम ने संघर्ष जरूर किया लेकिन टीम इंडिया 50 ओवर में 360 रन ही बना सकी और मुकाबला 27 रन से हार गई।
1: बिल्कुल, मुकाबला हार गई टीम इंडिया। बढ़िया बल्लेबाजी के बावजूद शुभमन गिल की अच्छा योगदान रहा। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी बैटिंग दिखाई और रोहित शर्मा ने तो सेंचुरी लगाई लेकिन उसके बावजूद जीत नहीं मिल पाई और सीरीज हाथ से निकल गई। क्या कहते हैं शुभमन गिल इस प्रदर्शन को लेकर, आइए सुनते हैं।
3: पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं होता इतना, तो आप ऑब्वियसली जितने ज्यादा रन आप बनाना चाहते हो उतने बनाते हो, बट अगर आप देखें तो अप अंटिल 46-45 ओवर्स हम उनसे आगे थे इफ यू लुक एट द कंपैरिजन, बट वी ऑलवेज न्यू कि आखिरी के 3 ओवर में 60 रन बनाने चेस करते हुए बहुत अलग होता है जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो क्योंकि आप देख नहीं रहे होते हो कि आप कितने रन बनाने। तो आई थिंक उस लिहाज से हमें

0: तो अभी आप योगेंद्र सिंह निमचाना से रागनी सुन रहे थे। और वंदना बहन, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, तो जैसा कि नाम से ही पता है,
1: जी
0: इससे कि धन धान्य की वृद्धि हो, यानी कम फसल उत्पादन करने वाले जिलों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पैदावार बढ़ाना
1: जी
0: ताकि उत्पादकता
1: बिल्कुल
0: बढ़े।
1: बिल्कुल। और फसल विविधीकरण में किसानों की पारंपरिक खेती के अलावा अन्य लाभदायक और जलवायु अनुकूल फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना और खेतों तक सिंचाई की बेहतर सुविधा पहुंचाना और फसल कटाई के बाद भंडारण और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना, ये
0: बिल्कुल
1: सब
0: वंदना
1: हमारे
0: बहन।
1: किसान भाइयों के लिए हमारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, इससे किसानों को आसानी से कृषि लोन यानी ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटा सके।
1: जी बिल्कुल। और इस योजना से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं कि 11 केंद्र मंत्रालयों और 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एक साथ एकीकृत करके लागू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम से देश में लगभग 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
0: बिल्कुल, जिन जिलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है वहाँ फसल विविधता का अभाव है और लोन लेने की सुविधा कम है, उन्हें इस योजना में विशेष रूप से शामिल किया गया है। तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी अपने क्षेत्र के वहाँ से ले सकते हैं आप, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो थी योजना की बात हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब करवाते हैं मनोरंजन अपने भाइयों का व्हीकल गुजर की आवाज़ से, ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे विकल गुजर से ये रागनी।
1: जी हाँ, और अब आपको देते हैं एक सूचना जो कि कल के फोन इन कार्यक्रम के बारे में है। फोन इन कार्यक्रम जो कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लगातार चलेगा, और इसमें हमारे जो किसान भाई हैं अपनी कोई भी समस्या हो तो हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं सीधे फोन करके। हमारी जो कल का विषय है वो है गन्ना फसल में कीट नियंत्रण, और हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 01 जरूर लगाएं।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमारा आज का ग्राम सज्जा कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: अभी आप ग्राम संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि

एक हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारी सी सेफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं। आइए सुन, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: वंदना बहन
1: जी।
0: हम हाजिर हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ, योजना के बारे में बताएंगे और मनोरंजन भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों को गांव से जोड़ना। इसके तहत वैज्ञानिक किसानों को तकनीकी जानकारी और उन्नत कृषि विधियों से सीधे उनके खेत में प्रदान करते हैं ताकि पैदावार बढ़ सके।
1: बिल्कुल। और उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सीधा संवाद स्थापित करके जो किसानों के बीच जो फासले और वैज्ञानिकों के बीच में जो फासले होते हैं उनको कम करना,
0: बिल्कुल
1: सीधे किसानों से बातचीत करना है।
0: बिल्कुल वंदना बहन, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से चलाया जाता है और कृषि अनुसंधान के नए निष्कर्षों और तकनीकों को प्रयोगशालाओं से निकाल कर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल। और कृषि के क्षेत्र में होने वाले शोध, उन्नत किस्मों के बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों और उर्वरक प्रबंधन तकनीकों को सीधे किसानों से खेतों तक पहुंचाना है।
0: जी वंदना बहन, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है, किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरकों के उपयोग और आधुनिक खेतों के तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है।
1: जी हाँ, मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में तो बताया ही जाता है और साथ ही साथ उनको बीमा और PM किसान योजनाओं के बारे में, जो योजनाएं किस सरकार ने चला रखी है हमारे किसान भाइयों को, सब्सिडी की, बैंक सब्सिडी के बारे में भी जागरूक करना है।
0: बिल्कुल। और वैज्ञानिक जो टीमें होती हैं गांवों को गोद लेती हैं और किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करती है।
1: जी हाँ, समस्याओं के साथ किसानों को खेतों में आने वाले रोग, कीटों और मिट्टी की समस्याओं की पहचान करवा के वैज्ञानिक उसका समाधान भी निकालते हैं।
0: बिल्कुल। तो इतनी सारी बातें होती हैं और तभी तो मेरा गांव मेरा गौरव कहलाता है।
1: जी बिल्कुल। हमारे किसान भाई इसमें पूरा सहयोग करते हैं और वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का सीधा संवाद भी करते हैं, बातचीत करते हैं और उसका हल निकालने के बाद उसका प्रयोग भी करते हैं।
0: बिल्कुल। तो आइए हम अब आपको जानकारी सुनवाते हैं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय।
1: जी
0: डॉक्टर मोहन सिंह, मृदा वैज्ञानिक, KVK गौतम बुद्ध नगर से।
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ाएं और कार्बनिक पदार्थ का फसलों के उत्पादन में क्या महत्व है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहन सिंह मीना जी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सर।
2: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये कार्बनिक पदार्थ क्या है।
3: ये कार्बनिक पदार्थ जो होता है एक कसर भूमि की जान होती है। जिस मिट्टी के अंदर कार्बन पदार्थ कम होता है तो वो मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, फर्टाइल सोल नहीं कहा जाता और उत्पादन उसके अंदर बहुत कम होता है।
2: यानी जो फसलों के उत्पादन में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
3: जी जी।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे कार्बनिक पदार्थ पहले तो हमारे खेतों में बहुत हुआ करते थे।
3: जी जी।
2: लेकिन इसको बढ़ाने की क्यों आवश्यकता पड़ी?
3: देखिए सर, क्या होता है, पहले जो कार्बन पदार्थ इसलिए बहुत होते थे कि हमारे किसान भाई देसी खाद का प्रयोग करते थे।
2: जी।
3: हरी खाद का प्रयोग करते थे और जैविक खादों का प्रयोग करते थे। अब क्या होता है कि अब रासायनिक खादों का बहुत प्रयोग करते हैं और शहफसली खेती नहीं करते हैं, मतलब उसमें फसल चक्र प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कार्बन पदार्थ काफी हमारी मिट्टी के अंदर कम होता जा रहा है और इसी कारण से हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ रही है और हमारा उत्पादन भी काफी घटता जा रहा है।
2: तो इसका ये कोई मात्रा है कि ये कम से कम कितना होना चाहिए?
3: हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। ऐसा है कि मिट्टी के अंदर जब हमारे किसान भाई यदि अपने खेती की मिट्टी की जांच कराते हैं
2: जी,
3: तो यदि 0.25 से लेकर के 0.45 तक होगा तो वो कम माना जाएगा उसे।
2: जी।
3: और ये मान ले 0.5 से लेकर के 0.75 तक होगा तो हमारा ओरन कार्बन को मीडियम माना जाएगा, उसमें हमारी फसल हो सकती है। और हमारा 7.5 से अबव होगा तो हमारा उच्च माना जाएगा, मतलब हाई माना जाएगा, इसलिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ओरन कार्बन को बढ़ाने के लिए काफी उपाय हमारे किसान भाई बता सकते हैं कि भाई ओरन कार्बन हमारे मिट्टी में कैसे बढ़ाया जाए और उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम मृदा में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के लिए उपायों पर बात कर रहे हैं, तो कौन कौन

0: तो भाई है, कैसे बढ़ा सकते?
1: कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए मिट्टी में सबसे पहले तो हमको जो फसल के अवशेष होते हैं, किसान भाई क्या करते हैं कि जो फसल अवशेष होते हैं, जैसे धान की हम पराली की बात करें या गन्ने के हम पत्ते की बात करें या किसी डंठल की बात करें, अधिकांश किसान भाई खेत में जला देते हैं और जलाने से हमें काफी नुकसान होते हैं। जो हमारे मित्र कीट होते हैं
0: जी,
1: जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हैं, वो भी हमारे जल के नष्ट हो जाते हैं, जो भूमि को अंदर अवशेषों को सड़ने गलाने में काम करते हैं, वहां मित्र कीट जल जाते हैं। पहली बात तो मेरा किसान भाई से अनुरोध ये है कि जो फसल के अवशेष हैं
0: जी,
1: उनको कभी ना जलाया जाए, खेत में ही उनको पलटा जाए, खेत में ही सड़ा गलाया जाए, जिससे कि जीवांश कार्बन हमारी बढ़ोतरी की तरफ रहता है। जो किसान भाई जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए फसल के अवशेष जैसे गन्ने की पत्ती, धान का पुआल और डंठल आदि को खेत में ही सड़ा दे गला दे, तो हमारा जीवांश कार्बन बढ़ोतरी की तरफ रहता है। अगले पॉइंट भी कह सकते हैं जीवांश कार्बन बढ़ाने के लिए
0: जी,
1: ये तो फसल अवशेष की बात हुई। दूसरा, पहले किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करते थे, जिसमें हरी खाद में ढेंचा, सनई और मूंग, लोबिया। अब ऐसा स्तर बदल गया है सर, देखिए कि आप किसान भाई फसल को लगातार करते रहते हैं, वो फसल चक्र प्रयोग नहीं करते और ढेंचा प्रयोग नहीं करते। जैसे अभी हमारा गेहूं कटा था रबी में, किसान भाई यदि ढेंचा बोदे थे उसमें या सनई बोदे थे 40 दिन की अवस्था में, जब फूल आने से पहले उसको हम खेत में पलटाई कर दें, तो हमारा जीवांश कार्बन बहुत अच्छा बढ़ेगा, ऑर्गेनिक परसेंट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक परसेंट 0.25 है, हमने मिट्टी चेक कराया, फिर उसके बाद पलटाई के बाद सर मिट्टी चेक कराते हैं, तो हमारा पक्का 0.57 तक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन पहुंच सकता है, केवल ढेंचा और सनई से ही।
0: जी, ये तो बात हरी खाद की रही, जैसे गोबर की खाद है,
1: जी,
0: कंपोस्ट है और केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसका क्या योग है?
1: देखिए क्या है कि किसान भाई अब हमारे देसी खाद से बहुत अलग होते जा रहे हैं। कोई कहते हैं कि जी पशुपालन का मैं इसको कहां से को देसी खाद आएगा और केचुआ खाद में ये है। वर्मी कंपोस्टर एक ऐसा कंपोस्ट है कि जो भी यार वर्मी होते हैं वो जो भूमि के जो खाद के अंदर एक इस प्रकार का उसको कूड़े कबाड़े गला करके इस प्रकार का बना लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं कि उसके नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने अपना सोयल टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्ट किया था वर्मी कंपोस्ट को, तो उसमें 1.5 से लेकर के 2% तक नाइट्रोजन था और 1.5% फास्फोरस और करीब 1.25 उसके अंदर पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट काफी थे उसके अंदर। तो वर्मी कंपोस्ट ये है, और देसी खाद जो फार्मी और मैनोर FIM कहते हैं उसको दी सड़ी हुई खाद बरसात के बाद 6 महीने के बाद, जब जैसे बरसात निकल जाए उसके बाद यदि हम खेत में डालते हैं तो जीवांश कार्बन सर अपने आप ही बढ़ता जाता है। मैं किसान भाई ये अनुरोध करूंगा कि जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फसल में आप कम से कम नहीं तो देसी भाषा में बात कर एक ट्रॉली पर बीघा दी हमारे किसान भाई डाल के चले
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन रवि की फसल में डालें, बरसात के बाद से धान है
0: जी,
1: अब ना डाल करके उसमें डालें रवि वाली फसल में
0: जी,
1: जैसे गेहूं में डालें,
0: उसका क्या फायदा?
1: उसका सर ये फायदा है, जैसे भी बरसात हुई आपने देखा होगा बरसात हो रही है
0: जी,
1: अभी हम जुलाई के महीने में डाल देंगे देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट ऑयल के अंदर, तो जो बरसात का जो पानी आ रहा है भयंकर बारिश, आपने देखा अभी बरसात काफी हुई है नेक्स्ट वीक में, तो उस बरसात के पानी से जो हमारा देसी खाद के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो घुल जाएंगे, उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे
0: जी,
1: और जो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो पानी होकर के बह करके और उसके साथ हमारे जो
0: पोषक तत्व
1: हैं वो बह कर सर चले जाएंगे और हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारा जीवांश कार्बन बढ़ नहीं पाएगा और हमारे फसल को मिल नहीं पाएगा।
0: यानी जो हमारी देसी खाद है उसको लगाने का सही समय जो हमारी रबी वाली फसलें
1: सर्दियों में अक्टूबर वाली, जो अक्टूबर में फसल बोते हैं जैसे गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, आलू बोते हैं, उसमें लगाया जाए तो वो हमारा पूरे साल के लिए हमारी न्यूट्रिएंट विद्यमान रहे, उसमें हमारा कोई ओवरफ्लो पानी नहीं होता है और टेम्परेचर भी सर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अधिक टेम्परेचर से भी उसकी जो नाइट्रोजन होती है फर्टिलाइजर में से देसी खाद में से वो बाष्पीकृत उड़ करके और वायुमंडल चली जाती है, जो हमारे पौधों को नहीं मिल पाती। टेम्परेचर 45-46 हो जाता है उससे भी नाइट्रोजन हमारी वाष्पीकृत हो जाती है, और सर्दियों में टेम्परेचर नहीं होता तो हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और सारे पोषक तत्व फास्फोरस पोटास उस खाद से मिल जाती है और हमारे जीवांश कार्बन बढ़ने की तरफ रहता है।
0: जैसे आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि किसान भाई खेत को आराम नहीं करने देते, लगातार एक न एक फसल लेते रहते हैं, अगर उसमें फसल चक्र अपनाए क्या कार्बनिक पदार्थ बढ़ सकते?
1: हाँ बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा है। एक तो फसल चक्र अपनाए और फसल चक्र के सिद्धांत अपनाए।
0: सिद्धांत क्या?
1: सिद्धांत का सर ये कहते हैं, फसल चक्र तो ये कहते हैं कि हमने इस समय हमने धान बोया
0: जी,
1: तो अगली बार हम धान के सीजन में धान न बो करके दूसरी फसल बोए, जैसे मक्का बोए,
0: कोई दलहनी फसल बोए
1: या दलहनी फसल बोए, ठीक है, फसल चक्र को उसी खेत में आने वाली फसल बदल बदल के बोए। और सर फसल चक्र सिद्धांत कहते हैं कि आज हमने धान बो रखा है
0: जी,
1: अधिक पानी चाहने वाली फसल बो रखी है, तो अगली फसल धान के बाद बोएंगे तो कम पानी चाहने वाली कम खाद चाहने वाली फसल बोनी चाहिए, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अधिक जुताई वाली अधिक खाद चाहने वाली फसल बो रखी है तो हम कम जुताई वाली कम खाद चाहने वाली फसल बो, जैसे दलहनी फसल, सरसों इस प्रकार हम फसल बोएंगे तो हमारे जीवांश कार्बन अपने आप ही एवम रहता है।

0: बोलते फसल चक्र के सिद्धांत।
1: जैसे आपने दलहनी फसल का जिक्र
0: जी
1: किया,
0: सर,
1: तो दलहनी फसलों द्वारा किस तरीके से कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया जा सकता है?
0: दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन को पर्याप्त करने के लिए, स्थिर करने के लिए राजू नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण उपस्थिति में वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके और हमारी जमीन की पल्स क्रॉप की जड़ों में फिक्सेशन कर देते हैं, और उससे हमारा जब नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो खेत में हमारा नाइट्रोजन पूर्ति हो जाती है। और दूसरा सर, उसके अंदर नेडूज होते हैं, उसकी जो जड़ होती है और उन पत्तियां होती, उनको जो हमारे भूमि के अंदर मित्र कीट है वो उनकी पत्तियों को और जड़ को गला सड़ा करके डिकम्पोज कर देते हैं
1: जी।
0: अपनी पत्तियों को जड़ को गला करके बैक्टीरिया एक ह्यूमस का निर्माण करते हैं, ह्यूमस एज ए ऑर्गेनिक कार्बन। जिस भूमि के अंदर ह्यूमस होगा अच्छा, तो ब्लैक कलर की सॉइल होगी, काले कलर की होगी, कॉटन सॉइल होगी, तो समझ लो जो ब्लैक कलर की सॉइल है उसमें हमारे ह्यूमस का अच्छा पर्याप्त मात्रा है। जो ह्यूमस है तो ह्यूमस एज ए ऑर्गेनिक कार्बन।
1: तो जिसे बहुत लोग जिक्र करते हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती,
0: जी जी जी,
1: क्या इसके द्वारा भी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाया?
0: हाँ सर, जैविक खेती प्राकृतिक खेती क्या होता है, जीवों के अंश से बनी हुई खाद को जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती जो हम जीवों के, जैसे हम गोबर है जीव अंश से बना हुआ है, ढेंचा है जीवों अंश से बना हुआ है, बर्मी कंपोस्ट जीवों के अंश से बनी खाद जैविक खेती, तो उसके प्रयोग करेंगे उससे जीवांश कार्बन बढ़ेगा हमारा। जैसे प्राकृतिक खेती में बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में जीवामृत घनजीवामृत, ये क्या प्राकृतिक अव्ययों से बनाए जाते हैं, जैसे देसी गाय का गोबर और गाय का मूत्र पेशाब, इसको यूज करते हैं। यदि खेत में देसी गाय का गोबर डालेंगे तो देसी गाय के गोबर में काफी मित्र कीट होते हैं, काफी लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं गोबर के अंदर, और भूमि में जाकर के वो उन कीटों को और बढ़ावा देते हैं जो हमारे मित्र कीट है। जैसे हम जीवामृत डालें और जीवामृत को सर यदि हम पानी में मिला करके सिंचाई के साथ यदि प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर काफी लाभदायक बैक्टीरिया हो जाते हैं, और लाभदायक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया पर जाकर के और बढ़ा देते हैं अपने बैक्टीरिया को, अपने परिवार को बढ़ा लेते हैं जमीन में। जब परिवार को बढ़ा लेते हैं तो हमारे बैक्टीरिया और जो हमारे जो फसल अवशेष उनको डिकम्पोज कर देते हैं गला सड़ा करके, बैक्टीरिया जीवांश कार्बन बढ़ाने में सक्रिय हो जाते हैं और हमारी मिट्टी उत्पादन करने के लिए सक्रिय हो जाती है उत्पादन बढ़ाने में। यदि हम इस जीवामृत घनजीवामृत डालते हैं
1: जी
0: तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, भूमि के अंदर जो छिद्र होते हैं उनको सोखने की क्षमता, भूमि के अंदर पानी रोकने की क्षमता भी सर बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी मिट्टी को पार्टिकल्स और पार्टिकल भी मजबूत हो जाते हैं, जो हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है और हमारी फसल करने का उत्पादन देती है, और मिट्टी हमारी ऊसर की तरफ से लेकर के एसिड की तरफ बढ़ती है, हमारी मिट्टी अम्लता और क्षारिता को छोड़कर नॉर्मल मिट्टी हो जाती है।
1: जी, जैसे मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, जैसे सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड चलाया, तो जिसके द्वारा किसानों को पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कितनी है, अन्य पदार्थों की कितनी मात्रा है जो हमें फसल उत्पादन के लिए जरूरत है। तो सरकार द्वारा कोई ऐसी और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके द्वारा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जा सके?
0: सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक योजना चला रखी है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मतलब है कि किसान भाई अपनी मिट्टी को लेकर के किसी नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर चेक करा। जैसे आजकल में आप देख रहे हो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहां पर मिट्टी जांच करने प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में किट रहती है जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बड़े पोषक तत्व जांच करती है, उसमें ये पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में कितना जीवांश कार्बन मौजूद है, कितने हमारे पीएच मान हमारी मिट्टी का, कितनी हमारी मिट्टी की विद्युत चालकता है, कितने हमारे मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे बोरान है, क्लोरीन है, जिंक है, जस्ता है, फेरस है, कितना है। यदि किसान भाई इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का फायदा उठाएं और कृषि विज्ञान केंद्र की लेबोरेटरी में या हमारे प्रत्येक जनपद में कृषि विभाग की तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला होती है वहां जांच करा लें, तो उसमें वहां के जो प्रभारी लिखेंगे कि जीवांश कार्बन कितनी परसेंट है। यदि हमारी मिट्टी के अंदर जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा उस पर यदि हमारा 0.57% कार्बन है, तो सर ये कहने का मतलब ये किसान वैसे कहना चाहूंगा कि उसमें हम प्रत्येक फसल को बो सकते हैं।
1: जी,
0: 0.57 यदि परसेंट हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश पदार्थ यदि कोई वहां प्रवाह लिखते हैं मिट्टी में, तो प्रत्येक फसल हो सकती है। और यदि 0.25 है ये तो उसमें बढ़ाने के लिए हम काफी मात्रा, मैंने बताया हरी खाद प्रयोग करें, सनी ढेंचा प्रयोग करें और बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करें, फसल अवशेष को ना जलाएं उसी में गलाएं सड़ाएं, और मल्चिंग का भी से एक बहुत अच्छा इसको होता है सर। और एक और जीवांश कार्बन में एक और होता है कि मैं किसान भाई कर कम जुताई करें,
1: उससे कैसा?
0: हाँ, कम जुताई से क्या होता है, किसान भाई आपने देखा बहुत सारी जुताई करते रहते हैं
1: जी,
0: तो जो भूमि के अंदर विद्यमान नाइट्रोजन है वो तुम्हारे तत्व है वो अधिक जब पलटाई करते रहेंगे तो वो ऊपर आती रहती है नाइट्रोजन, ठीक है, तो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, और वो नाइट्रोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो डस्ट हो जाते और उड़ चले जाते जो हमारी भूमि से निकल जाते। एक मैं टेक्निक किसान भाई कहना चाहूंगा कि बहुत कम जुताई करें, जहां में चार जुताई आवश्यकता है वहां पर दो जुताई करें,
1: मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना करें,
0: ज्यादा ना करें। लास्ट मैं अनुरोध यही करूँ किसान भाइयों से
1: जी
0: कि फसल के अवशेष ना जलाएं। तो यही सर किसान भाई से मेरे

0: अनुरोध था।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया और किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वो मृदा में जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उसको बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करें, और उसके साथ साथ जो उनके अवशेष हैं फसलों के उनको जलाएं नहीं, उनकी आप कंपोस्ट खाद बना लें, उनको सड़ा गला के मृदा में पुनः अपने खेत में मिला दें, आपके मृदा का कार्बन पदार्थ बढ़ेगा और आप जो भी फसल लगाएंगे उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: डॉक्टर मोहन सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के उपाय। डॉक्टर मोहन सिंह जो मृदा वैज्ञानिक हैं गौतम बुद्ध नगर में, उनसे बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: वंदना बहन, अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं तेजवीर विधुड़ी से ये उपदेश।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये उपदेश तेज वीर विदुर की आवाज़ में। और देखिए, जैसे कि कुसुम बहन, हम सबको पता है कि वही जुलाई माह में जो हमारी फसलें होती हैं उनकी भी हमें देखभाल करनी होती है। और तो खेतों में जो जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटाते रहें, और बारिश का तुरंत बाद कीटों को रोगों की निगरानी करते रहें, और साथ ही साथ यूरिया को एक साथ न डालने के बजाय किस्तों में डालें, थोड़ा थोड़ा।

0: डालें तो इस तरह आप अपनी फसलों का ध्यान रख सकते हैं। और अगर जैसे मानसून की सक्रिय फसलें हैं, जो लोग खरीफ फसलें हैं जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और सब्जियां, ये बहुत ही अहम होती हैं। और इनकी अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, बम्पर पैदावार पाने के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, ये तो हुई जानकारी। तो जैसा कि हम आपका मनोरंजन करा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना कि वंदना बहन, ये जिंदगी बहुत छोटी होती है, जितना भी
0: जी
1: हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए ताकि उसका फल हमें मिले।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसा ही कुछ उपदेश है थोड़ी सी जिंदगानी जगत मुसाफिर, सुनते हैं सोमपाल सिंह से।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे सोमपाल सिंह की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

अमर अकबर एंथोनी में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को बहुत ही खूबसूरत कव्वाली के साथ। और ये जो इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गज़ल कव्वाली, तो इसमें एक गज़ल हम आपको और सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम में, जो हमने लिया है फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: इसी गज़ल के साथ ये गज़ल गीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे
2: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
1: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
2: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
2: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का

0: सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल भराव वाले हॉटस्पॉट पर नालों की सफाई की स्थिति की समीक्षा की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा विस्तार से हुई। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों या कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं या अपुष्ट सामग्री पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने आज संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली को

0: दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया, जिससे 15 लाख लोगों को राहत मिल सके। श्री बिधोड़ी ने कहा कि वर्ष 2010 में जिन क्षेत्रों को ओजोन में डाला गया, उनमें दिल्ली सचिवालय, अक्षरधाम मंदिर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज और डीडीए द्वारा नियोजित ढंग से बनाई गई मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांव को भी ओजोन क्षेत्र में डाला गया। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को ओजोन से हटाने की मसौदा अधिसूचना भी जारी कर दी थी। श्री बिधोड़ी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस सभी क्षेत्रों को ओजोन से हटाया जाए, जिससे उन्हें नियमित किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को राजधानी में लागू करने और उसका समर्थन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये योजना पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह BS6 कड़े प्रदूषण मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम किया जा सके।
1: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई वाहन मालिक अपना BS4 या उससे नीचे का हल्का मालवाहक वाहन को स्क्रैप करा के वैसा ही नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 10 वर्षों के लिए 100% मोटर वाहन कर में छूट और 100% पंजीकरण शुल्क माफी दी जाएगी। इसके साथ ही ब्याज में 5% की सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8% की छूट और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट, ब्याज में 5% की सब्सिडी और ईंधन वाउचर के रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ दिया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना में पुरानी BS4 या उससे नीचे की बसों को भी शामिल किया गया है। इन बसों को भी मालवाहक वाहनों के समान सभी लाभ उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों को एक वर्ष से अधिक समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी की देनदारियों में भी राहत दी जाएगी। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मॉनसून के लिए राजधानी की तैयारियों और शहरी बाढ़ से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने पानी जमा होने वाले चिन्हित हॉटस्पॉट पर क्षमता तुरंत बढ़ाने और दिल्ली में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल हैवी ड्यूटी पंपों को हर समय चालू रखने, लोगों की प्रतिक्रिया और जमीनी हालात की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत पर भी बल दिया। श्री संधू ने जानकारी दी कि पानी जमा होने वाले चिन्हित स्थानों की संख्या वर्ष 2024 में 194 से घटकर वर्ष 2026 में 34 रह गई है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास सभी संबंधित विभागों की लगातार प्लानिंग, तालमेल के साथ काम करने और निरंतर मॉनिटरिंग के असर को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज आनंद विहार के अंतर्गत योजना विहार में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निगम ने कहा कि ये विकास कार्य क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य स्थानीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि हाल ही में बिछाई गई 900 मिलीमीटर व्यास वाली ख्याला मेन लाइन को दो जगहों पर जोड़ने के काम के कारण पंजाबी बाग, नारायणा, इंद्रपुरी और मोतीनगर के आसपास के क्षेत्रों में बृहस्पतिवार से शुक्रवार तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली भाजपा ने आज प्रदेश के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अनुमति और विचार विमर्श के बाद जारी सूची में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। श्री मल्होत्रा ने बताया कि प्रदेश संगठन में

10 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित ये संगठन केंद्र और दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी तथा विकसित दिल्ली और विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम ने आज जवाहर नगर क्षेत्र में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को समयबद्ध और नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक ट्रैफिक पाठशाला आयोजित की। यह कार्यक्रम सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को कम करने और छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ नष्ट करने के 10वें कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 1450 किलो के से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 897 करोड़ रुपए है। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HGS धालीवाल की उपस्थिति में आयोजित किया गया। पुलिस ने बताया कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ड्रग फ्री भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित करने और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति तय करने के बाद शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में ऐतिहासिक बम विस्फोट कर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाले बटुकेश्वर दत्त का अद्वितीय साहस, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रभक्ति हर देशवासी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री नड्डा ने कहा, बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने संसद में ओजोन का मामला उठाकर सरकार से दिल्ली की 92 कॉलोनियों और 12 प्राचीन गांवों को ओजोन से हटाने का अनुरोध किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे चुके हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है लोफर और इसे स्वरों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो आइए सुनते हैं अपने समय का बहुत ही खूबसूरत गीत।

फिल्म तेरे नाम में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। गीत रचना थी समीर की और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को, फिल्म आरजू में, और ये जो गीत रचना है सागर आर्ट कॉरपोरेशन की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथी। गीत रचना है देव कोयली की और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गाना। फिल्म का नाम है सूरज, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीत रचना है वीनस पिक्चर्स की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, और इसको आवाज दी है मुकेश ने। गीत रचना है हजरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं मुकेश और कंचन को फिल्म धर्मात्मा में। गीत रचना है इंदिवर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथी संगीत से संवारा है शिव हरि ने।

0: सिलसिला फिल्म के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई।

0: विधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनौ में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
4: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
6: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी

अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55,49,00,000 उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314,00,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Government and private educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will remain closed tomorrow following a red alert for heavy rainfall. The weather office has also forecast heavy rain in Chamba and Kulu districts. In Sikkim, all 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel in southern part of the state were safely rescued today following a massive multi-agency operation. A landslide reportedly had triggered a suspected gas leak inside the tunnel. In the United Kingdom, newly elected leader of the Labour Party, Andy Burnham, has took charge as the country's new Prime Minister. King Charles III invited the 56-year-old former mayor of the Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. In his inaugural speech at 10 Downing Street, Mr. Burnham said he will make politics more about problem solving.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years, a new political model and a new economic model. In the 1980s, Britain took some wrong turns. Political power was centralised, economic power privatised, large parts of the country deindustrialised, and they still haven't recovered. And that's why we will change politics. To make it more collaborative, more about problem solving than point scoring.
0: In news, Justin, India has condemned the attack on the vessel MV Golden Leo yesterday while departing the port of Odisha. External Affairs Ministry in a statement said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. Benchmark domestic equity indices ended on a negative note today. The Sensex declined 443 points or 0.6% to close at 77,709. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins on stormy note. Both Houses of Parliament witness repeated disruptions over various issues. Union Minister JP Nadda holds talks with protesters in New Delhi, appeals to end sit-in and restore normalcy. President Draupadi Murmu calls for stronger economic partnership between India and Moldova and greater cooperation in high-growth sectors. Heavy rainfall claims four lives in Jammu division, taking death toll over past 2 days to 16. Red alert issued for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. And Labour Party leader Andy Burnham assumes office as the new Prime Minister of the United Kingdom. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के दरमियान मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया है। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद चार लोगों की जान चली गई है, जिससे पिछले दो रोज में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेरइंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल बहुत शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है और लेबर पार्टी के लीडर एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब खबरें तफसील से। मानसून इजलास के पहले दिन आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आराई करती रहीं। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत हाल ही में फौत हुए अपने 6 साबिक अराकीन पार्लियामेंट को ताजियत पेश करने के साथ हुई। ऐवान ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। ताहम वक्फे सवाल की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपोजिशन अराकीन नीट मामले पर नारेबाजी करने लगे। पहले स्पीकर ओम बिरला اور بعد میں پریسائیڈنگ افسر دلیپ سائکیا کی جانب سے ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے

और कार्रवाई चलने देने की बार बार अपीलों के बावजूद एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इधर राज्यसभा की कार्रवाई में भी बार बार रखना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 9 मुंतखब अराकीन की हलफबरदारी से हुई, जिसके बाद 4 साबिक अराकीन के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अपोजिशन अराकीन की जानिब से नीट पेपर लीक मामला और दीगर मामले उठाए जाने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। हालांकि चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कामकाज चलाने की कई मरतबा कोशिश की। राज्यसभा की कार्रवाई भी बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए एक सूदमंद मानसून इजलास पर जोर दिया है कि जिस तरह एक अच्छा मानसून मुल्क के लिए मुफीद होता है, उसी तरह एक तामीरी पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की में ताउन करती है। इजलास के शुरू होने से पहले मीडिया से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान नए संगमील हासिल कर रहे हैं, जिससे इस्लाहात की कामयाबी और भारत की बढ़ती सलाहियतों का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता महीने की हुसूलियाबियों ने, जिनमें खलाई शोबा शामिल है, हर भारतीय को फख्र का एहसास कराया है। आलमी महाजराई खासतौर पर मगरबी एशिया का हवाला देते हुए वजीर अजम ने कहा कि भारत ने तवानाई, खाद और दीगर जरूरी अशिया की सप्लाई से मुतालिक चैलेंजों का कामयाबी से सामना किया है। वजीर अजम ने मजीद कहा कि इन चैलेंजों के बावजूद मुल्क ने 7.7% की शरह तरक्की दर्ज की है, जो उसे दुनिया की तेजी से तरक्की कर रही अहम मईशत बनाता है। जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि मानसून इजलास मुल्क की तरक्की के सफर को मजीद मुस्तहकम करेगा। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मुजाहिरीन के नुमाइंदों से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत से बात करने की तजवीज आज सुबह मुजाहिरीन की जानिब से आई। जनाब नड्डा ने कहा कि यह मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और मुजाहिरीन के वफद के साथ तफसील से शुरुआती जबानी बातचीत हुई। इसके बाद मुजाहिरीन के वफद ने सहपहर 4 बजे के करीब हुकूमत को एक तहरीरी अर्जदाश्त सौंपी। जनाब नड्डा ने सभी मुजाहिरीन से धरना खत्म करने और इंतजामिया को मामूल के हालात बहाल करने में मदद करने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान मुजाहिरीन से कौमी राजधानी में अमन व अमान बरकरार रखने, तहमुल बरतने और कानून नाफिज करने वालों के साथ ताउन करने की अपील की, ताकि अमन व कानून की अवामी सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अपने वीडियो पैगाम में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने लोगों से तशद्दुद से बाज रहने, पुलिस हिदायत पर अमल करने और सोशल मीडिया पर अफवाहें या गैर मुसद्दका इत्तेलात फैलाने से गुरेज करने की अपील की। जनाब राजीव रंजन ने शहरियों से मालूमात के लिए मुस्तनद ज़राए पर इन्हिसार करने की भी अपील की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया की इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि एहतजाज कर रहे अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन इल्जाम को बिल्कुल गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो अयोध्या के राम मंदिर मुबैना चंदा गबन मामले में खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने के इम्कान पर गौर करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों को खबरदार किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल की आमिजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मियारात में बेहतरी लाना।

0: है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमू के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: I am greatly encouraged by the growing cooperation. There is immense potential for collaboration across diverse sectors such as digital technology, artificial intelligence, cyber security, fintech, digital public infrastructure, infrastructure development, renewable energy, advancement at manufacturing, logistics, agriculture, food processing, pharmaceuticals, biotechnology. Indian companies are interested in participating in the development projects of Moldova in renewable energy sector, including solar energy, battery storage, smart grids, green
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाऊ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरक खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुवत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: इंडिया ऑल्सो ऑफर्स गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मोल्डोवान कंपनीज फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वी रिमेन कमिटेड टू फॉस्टरिंग ए ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट। आई इनवाइट मोल्डोवान बिजनेसेस टू कम एंड एक्सप्लोर इंडिया। आई ऑल्सो एनकरेज इंडियन बिजनेसेस टू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज इन योर एंटरप्राइज विजन एंड कमिटमेंट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग एंड्यूरिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मस्नूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाऊ में स्टेफन शेल माहरे शीस फंड यादगार पर गुलाय अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद चार लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले दो दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेरंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नजर सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी जिलों में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर लापता हो गए थे। दोनों सरहदी अजला में आज देर रात वक्फे वक्फे से बारिश होती रही, जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी थीं। इस वजह से तलाश और बचाव की कार्रवाई में सख्त मुश्किलात पेश आईं। मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। NDRF, SDRF, जम्मू और कश्मीर पुलिस और फौज समेत हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर की अहम सड़कें फिर से खोल दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में पानी सप्लाई की बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके मद्देनजर जिला इंतजामिया ने लोगों को मोहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी इलाकों में भी अगले दो दिन तक भारी बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार जजायर में भी कल गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली में आज हुई बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली। महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक

कल राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 से 33 डिग्री, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। लेबर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद एंडी बर्नहैम ने बरतानिया के नए वजीर आजम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टार्मर के इस्तीफा देने के बाद शाह चार्ल्स स्वयं ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 साल साबिक मेयर को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। इससे कबल कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपना आखिरी खिताब किया, जिसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए बकिंगम पैलेस गए। उन्होंने कहा कि वो जनाब बर्नहैम को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने लेबर पार्टी के नए लीडर को अपनी मुकम्मल हिमायत का अज़्म किया। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साइमन स्टील से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान आबो हवा की तब्दीली की रोकथाम के तरीक़ेकार को अपनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, माहौलियात से मुतालिक मालियात, आलमी सतह पर जायजे और टेक्नोलॉजी की मसावियाना मुंतकली जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत ने न सिर्फ कौमी सतह पर अपने तयशुदा अहदाफ को मुकर्रर वक्त से पहले हासिल किया, बल्कि आबो हवा की तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए दीगर शोबों में भी अहम पेशरफ्त की है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि भारतीय टीम ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी और सिस्टेमेटिक्स के अलावा प्लांट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे मजामीन में गैर मामूली जानकारी फराहम की है, जो कि एक अजीम कारनामा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास शोरगुल के साथ शुरू हुआ। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर शोर शराबे की वजह से बार बार मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ बातचीत की। उन्होंने धरना खत्म करने और मामूल के हालात बहाल करने की अपील की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान मजबूत इकतसादी शराकत दारी और आला तरक्की वाले शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर जोर दिया। जम्मू डिवीजन में शदीद बारिश से मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक कल रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना

मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Authorities have asked people to follow official advisories and contact the state emergency helpline 1070 or the district emergency helpline 1077 in case of any emergency. India Meteorological Department has issued a red color warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं 1:10 और 8 सेकंड हो चले हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। जी हाँ, फिल्म संगीत पर आधारित वो कार्यक्रम जिसमें लेकर आते हैं हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा का संगीत, यानी कि उस सुनहरे दौर की यादें जिसे हम 60, 70, 80 के दशक से लेकर आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही चुने हुए फिल्मी गीत जो कि उस दौर से वास्ता रखते हैं, उस दौर से संबंध रखते हैं, और जब आप इन गीतों को सुनेंगे तो यकीनन आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज के इस कार्यक्रम में आपका दोस्त

चलो कोई बात नहीं, हम गाएंगे। अब वो लल्लू की तुम बजा सरंगी। ओए ओए ओए।

अरे कुछ तो ए कुछ तो बोल।

बावर्ची फिल्म से गीत सुना मन्ना डे की आवाज में और कार्यक्रम गीत सुना रहे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल।

सुराग फिल्म का एक गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में, और जी हाँ, बहुत सारी यादें ज़रूर आपकी ताज़ा हो गई होंगी। भीगा भीगा मौसम, और इस समय अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल भीगा भीगा है। स्टूडियो से बाहर अगर हम देखें तो बारिश की फुहार और मौसम बहुत खूबसूरत, कार्यक्रम भी खूबसूरत है। और आप हैं आकाशवाणी के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, जहाँ आज के इस कार्यक्रम में, जी हाँ, गीत सुना रहे कार्यक्रम में, जहाँ लेकर आते हैं हम गोल्डन एरा का फिल्म संगीत, उसमें आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल इन खूबसूरत गीतों के साथ। सौदागर फिल्म से एक और खूबसूरत गीत आशा भोसले जी की आवाज़ में।

फरक फिल्म के इस गीत में आपने सुना रविंद्र जैन साहब को, और कार्यक्रम में आगे बढ़े तो महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत गीत जब आप सुनेंगे तो बहुत सारी यादें ताजा हो जाएंगी, यकीन मानिए। आप सुन रहे हैं गीत सुनारे, कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होता है, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत आपने सुना पूरब और पश्चिम फिल्म से, और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत शराबी फिल्म से।

इसी के साथ आज का गीत सुनारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं को जी पलों में 2 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल और श्रोताओं, समय हो चला है 2:10 का। ये समय होता है कार्यक्रम गीत बहार का। गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत, जिसके साथ आज मैं हूं आपका दोस्त अतुल।

0: और इसी के साथ गीत बाहर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद की मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों

0: की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की SI जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak

यानी कि जो गजल रचना है वो है मिर्जा गालिब साहब की, और संगीत दिया है निहारिका सिन्हा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ चित्रा सिंह को।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में हमने लिया है एक गजल को फिल्म नाम से। कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: इसी के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी शौखन। 5:30 पर स्वर रंजनी कार्यक्रम होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आप सुनेंगे वरुण कुमार पाल का गिटार पर बजाया गया राग नट भैरव।

7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अर्चना आचार्य के भजन। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग अर्थात हिंदी फिल्म संगीत का, और 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का गायन।

0: सुबह 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, जिसमें आज का विषय रहेगा भ्रूण चिकित्सा और जेनेटिक्स। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर ज्योति गुप्ता, भ्रूण चिकित्सा और आनुवंशिकी विशेषज्ञ, और साथ ही परामर्शदाता होंगी स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। भेंटकर्ता होंगे दिलीप झा। नौ बजकर 30 मिनट का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा सुर मंजरी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे अनुजा झा का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर महिला कार्यक्रम होगा घर आंगन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं ऋतुराज।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो

0: तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताव किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की

स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।